सुप्रभात। FM 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: किसी आदमी ने कर्ज लिया, आसानी से मिला, इसलिए ज्यादा लिया और खर्चा करते हुए कोई संकोच नहीं रखा। बाद में देखा कि कर्जा चुकाने की उसकी न तो ताकत है और न ही गुंजाइश। दिन रात कर्जे की चिंता इतनी बड़ी कि नींद हराम हो गई। कर्जा चुकाने का जब कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ा तब उसने अपना रुख ही बदल दिया। उसने ये बात ही भूलने की कोशिश शुरू कर दी कि उसके सिर पर कर्जा है। इसी में आसानी भी थी। अब कर्जे की बात उसके ध्यान से ही बाहर रहने लगी। अगर किसी ने और खासतौर से उसके हिसाब नवीस ने उसे कर्जे का स्मरण कराया तो बड़ा नाराज होता था। कर्जे का जिक्र तो क्या, उसके स्मरण को भी टालना, यही उसके जीने की तरकीब हो गई। भूल जाने से जिस तरह कर्ज नहीं टलता, उसी तरह मनुष्य अपनी मृत्यु को चाहे जितनी भूलने की कोशिश करे, मृत्यु नहीं टलती। लोग कहते ही हैं, कर्जा और मृत्यु दोनों की यात्रा दिन रात चलती ही रहती है। मृत्यु की बात, मृत्यु का स्मरण टालने से मनुष्य ने कभी कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ खोया है। मृत्यु का स्मरण अगर बहुत तीव्रता से जागा रहे तो मनुष्य गलतियों से और गुनाहों से बहुत कुछ अपने को बचा सकेगा। उसके जीवन में गहराई आएगी। फिजूल बातों में वो अपना दिन बर्बाद नहीं करेगा और जीवन को कृतार्थ बनाने के उसके प्रयत्न में उसे सफलता मिलेगी। जब मृत्यु अनिवार्य है तब उसी को हम अपने जीवन का चौकीदार क्यों ना बनाएं? जीवन जीने का अच्छा तरीका यही है कि मनुष्य मृत्यु को अपने साथ लेकर उसके साथ बातचीत करते करते जीवन यात्रा चलाए। जीवन के साथ मृत्यु तो आती ही है, जिस तरह वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, दिन की प्रवृत्ति के अंत में नींद, नाटक समाप्त होते ही जैसे पर्दा, यात्रा खत्म होते ही जैसे इष्ट के दर्शन, उसी तरह जीवन के अंत में मृत्यु का आगमन होता ही है। गीता कहती है, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, तीनों को समान समझना। अकेले दुख से जीवन असत्य और विकृत हो जाएगा, अकेले सुख में जीवन विकृत हो जाएगा। सभी प्राणियों के लिए और खास करके मनुष्य के लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक से महत्व के हैं। जैसे सुख केवल पोषक है और दुख बोधक है, सुख जीवन रूपी महासागर पर तैरना सिखाता है, दुख उस महासागर में डुबकी लगाकर अंदर से महान तत्व रूपी मोती लाने की कला और हिम्मत देता है। मृत्यु के महासागर में डुबकी लगाकर ही तत्ववेता मनीषी और अपने समय के शिल्पी समय से ऊपर उठे हैं, मृत्युंजय कहलाए हैं। गीता में कहा गया है, जैसे कपड़े पुराने होने पर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह एक देह के जीर्ण होने पर मनुष्य उसे छोड़कर दूसरी देह ले लेता है। जो कोई भी जीवन और मृत्यु के परिवर्तनशील संस्कार को समझ लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, अपने हर पल को पूरी सामर्थ्य के साथ जीता है। तत्ववेता काल की निरंतरता में रमता है, मनीषी अतीत को भविष्य से जोड़ता है और विज्ञानी अपने समय के नए नए रूपों में उसको रचता है। मृत्यु एक भय है यदि हम जीवन और समय के प्रति ईमानदार नहीं हैं। मृत्यु एक दोस्त बन जाती है जब हम जीवन और समय के प्रति ईमानदारी निभाते हैं।
2: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जीवन में निरंतरता के संबंध में विचार, वाचक स्वर था प्रेम कुमार सडाना का। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं मातृवंदना।

मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं गणेश वंदना। ओंकारेश्वर वक्रतुंड महाकाय भगवान श्री गणेश देवभूमि में प्रथम पूजनीय हैं, जो जब तब सुमिरन मात्र से जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभु का हम बारंबार नमन करते हैं और सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। रे मन, प्रभु भक्ति में अपार आनंद है और ऐसा आनंद जीवन में कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए इस सांसारिक संबंधों से दूर प्रभु भक्ति में निस्वार्थ भाव से मन लगा और इस भक्ति में अपार सुख है।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। कष्ट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट मोचन भगवान हनुमान के सुमिरन मात्र से जगत के सारे दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे राम भक्त हनुमान को हम बारंबार नमन करते हैं और सुनते हैं अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में ये भजन।
1: देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू

शांता सक्सेना के गाए इस जन भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। नीचे सुनिए श्री रामचरित मानस कान का संगीत पद पाठ।

काक भुशुंडी को श्री राम के मुख में प्रविष्ट होने के बाद उनके उदर में अनगिनत ब्रह्मांडों के दर्शन प्राप्त हुए। काक भुशुंडी ने 100 कल्प उन ब्रह्मांडों में बिताए। जब अयोध्यापुरी में श्री राम अवतार का समाचार सुना तो हर्षित हो वहां जा पहुंचे, श्री राम जन्म महोत्सव देखा, किंतु फिर भी मोह नहीं मिटा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ, कलाकार थे ई हरिहरन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

पीपल्स पद्मावन आकाशवाणी ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:10 पर, 10:30 पर, दिन में 11:10 पर, 12:10 पर, 1:10 पर, 3:10 पर, शाम 4:10 पर, शाम 5:25 पर, 6:10 पर, शाम को 7:25 पर। और साथ ही ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 10:00 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा रिले किए जाएंगे। नमस्कार देहरादून, ये सूचना पर कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम शैल संगीत होगा सुबह 7:30 पर, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुन पाएंगे वंदना कोटनाला के गाए गढ़वाली लोकगीत। आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर सुनिएगा कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे सुबह 9:00। दोपहर 12:30 पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंडल, जिसके अंतर्गत बच्चे सुनेंगे बच्चों के मुख से रचनाएं बाल गीत और देवभूमि पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा गुलाम साबिर का सारंगी वादन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम में एक कलाकार होगा शाम 4:30 पर। शाम 5:10 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज क्रम रहेगा श्रोताओं की अनुरोध माँ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा डॉक्टर संदीप कुमार से विकास चमोली की बातचीत, विषय रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख समस्याएं। रात्रि 8:00 काव्यांजलि के अंतर्गत आप सुन सकते हैं श्री विनय कुमार का काव्य पाठ। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सोमेश कुमार की गायी गजली प्रसारित की जाएंगी। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 10:12 पर, दिन में 11:00, 1:15 पर, 3:25 पर, शाम 4:30 पर, 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर, रात को ही 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: हमारी दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47,000,000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामी 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यवसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चर्चा है मेहरबान कदरदान, इसमें बनावट है न धोखा है।

ये स्वर थे आशा भोसले गीत दत्त सुधा मल्होत्रा और साथियों की फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत दादा राम का था।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का यह है अगला गीत। गीत रचना शैलेंद्र की, संगीत सलील चौधरी का, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम दो बीघा जमीन।

0: अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती। आनंद स्वरूप बने गढ़वाल आयुक्त। आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कुल संख्या 20,00,000 के पार पहुंची। और देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। शासन ने प्रदेश में आईएएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के कुल 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इनमें 19 आईएएस, 8 पीसीएस और 2 सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। शासन के आदेश के अनुसार आनंद स्वरूप को गढ़वाल मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल को सचिव नियोजन बनाया गया है और उनकी जगह आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी बनाया गया है और स्मार्ट सिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को वर्तमान दायित्वों के साथ सचिव उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपूर्वा पांडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि आकांक्षा कोंडे को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और निदेशक कर्मचारी बीमा योजना की जिम्मेदारी दी गई है। नमामि बंसल को नगर आयुक्त देहरादून के पद से हटाकर अपर सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग में तैनात किया गया है। उनकी जगह आलोक कुमार पांडे को नगर आयुक्त देहरादून बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल के डीएसवी परिसर में कुलपति और विभिन्न संकायाध्यक्षों के साथ उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और कौशल विकास को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की मुख्य धुरी हैं और शिक्षकों की भूमिका केवल पाठ ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करना भी जरूरी है। बैठक में राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम समयानुकूल और रोजगार उन्मुख होने चाहिए ताकि विद्यार्थी नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान और नवाचार में भी दक्ष बन सके। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप, प्रयोगात्मक शिक्षा, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भू विज्ञान विभाग और शैक्षणिक उपलब्धियों, रसायन विज्ञान विभाग के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों और नौसेना एनसीसी गतिविधियों की सराहना की। चमोली जिले में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के सहयोग से संचालित इस परियोजना के माध्यम से पशुपालकों, किसानों और हस्तशिल्पियों की आजीविका को मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में परियोजना जिले के करीब 29,000 परिवारों की आय बढ़ाने में सहयोग कर रही है। एक रिपोर्ट।
2: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ही व्यक्तिगत, उद्यम और CBO स्तर की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वो अपने घरों पर ही स्वरोजगार स्थापित कर सके। इसके जरिए डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि आधारित गतिविधियों, टेलरिंग, आटा चक्की, मधुमक्खी पालन, रिंगाल हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक शशिकांत यादव ने बताया कि अब तक जिलों में 880 लाभार्थियों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा फार्म आधारित व्यक्तिगत उद्यमों के तहत 327 और नॉन फार्म आधारित उद्यमों के तहत 278 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि जिले में CBO और FPO स्तर पर भी कई उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुछ इकाइयों पर कार्य अभी प्रगति पर है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से निशी भाटिया।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के आर्यनगर वार्ड स्थित साकेत कॉलोनी में 9,05,80,000 रुपये की लागत से बनने वाली सीवरेज योजना का

0: शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने लंबे समय से चली आ रही सीवरेज समस्या के समाधान की दिशा में इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने एमडीडीए की ओर से कैनाल रोड स्थित एकता एवेन्यू पार्क में करीब 19,37,000 रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यीकरण कार्यों का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि साकेत कॉलोनी की सीवरेज योजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि योजना पूरी होने के बाद स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी और जलभराव की समस्या में कमी आएगी, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों धामों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और यात्रा लगातार सुचारू रूप से जारी है। शनिवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 96,116 श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए। इसके साथ ही कुल श्रद्धालुओं की संख्या 20,76,000 के पार पहुंच गई। अब तक केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 8,11,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 5,56,000 से अधिक, गंगोत्री में 3,52,000 और यमुनोत्री धाम में 3,56,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को मौसम खराब होने की स्थिति में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन 6,605 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है। स्वर्गीय अमृतलाल गुप्ता की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। श्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में विद्यालय के पूर्व छात्र और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद मेजर चंद्रशेखर मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, सैन्य अधिकारी और शहीद के परिजन मौजूद रहे। मेजर चंद्रशेखर मिश्रा ने वर्ष 1973 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश लिया था और वर्ष 1981 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयनित हुए। इसके बाद वे भारतीय सेना की 14 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। वर्ष 1996 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन मधु सेंगर ने शहीद मेजर की प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनकी पत्नी राजश्री मिश्रा सहित ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स के लिए आयोजित फॉरवर्ड एरिया टूर को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एटीयू के एनसीसी बटालियन के 20 कैडेट्स इस भ्रमण में शामिल हैं। इस भ्रमण का उद्देश्य युवाओं को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारतीय सेना के सामरिक अभियानों की जानकारी देना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। इसके साथ ही यह कार्यक्रम भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने से भी जुड़ा है। पंचशूल गनर्स द्वारा आयोजित यह भ्रमण हाल ही में 119 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। इसके तहत प्रौद्योगिकी, साइबर अध्ययन, सतत विकास और जनसंचार क्षेत्रों में सहयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती। आनंद स्वरूप बने गढ़वाल आयुक्त, आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में उच्च शिक्षा की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं

0: भारी भीड़, एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कुल संख्या 20 लाख के पार पहुंची। और देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन प्रभा 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हुए हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए वंदना कोटनाला के गाए गढ़वाली लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: वंदना कोटनाला के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह की 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
6: We all know that under the visionary...
4: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
6: Certainly we'll be able to get the success.
3: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
7: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
10: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
3: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
3: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली टुडे। आयुष्मान भारत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम जुलाई, स्वास्थ्य साथी बेनिफिशियरीज टू बी इंक्लूडेड। महाराष्ट्र एस

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, रविवार का दिन और आज उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ श्रोताओं, आज 24 मई है और इस दिन को दुनिया भर में राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ डे के रूप में। श्रोताओं, इस दिन 56 स्वतंत्र देशों के बीच शांति, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 1958 से राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रोताओं, इस प्रकार से मानवता और शांति को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 24 मई को मनाया जाता है। आइए हम भी जात पात और वर्गभेद से दूर मिलकर इस दिन को मनाएं और अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पलटते हैं अखबार के पन्ने की। आज क्या है अखबार पन्नों में खास? देहरादून और बागेश्वर के डीएम समेत 19 आईएएस अफसरों का तबादला। श्रद्धालुओं के लिए खुले गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट। नीति घाटी से पहले दून में दिखा साहस व रोमांच का संगम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सप्ताह का उद्घाटन। काउंटडाउन रन को दिखाई हरी झंडी। दून विश्वविद्यालय के 75 छात्रों का उच्च पैकेज के लिए चयन। राज्य के 8 जिलों में जंगल की आग विकराल। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान हुआ लागू। 30 मई तक हर दफ्तर में आईसीसी वेब फीडिंग रूम अनिवार्य। बढ़ेगी तपेश। मैदानी जिलों में हीट वेव का अलर्ट। हीट स्ट्रोक का बड़ा खतरा। डॉक्टरों ने दी सतर्क रहने की सलाह। और अब मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज रविवार को देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या गर्जन के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी है। अगले दो दिनों तक तापमान वृद्धि के बाद और इसमें कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। श्रोतम, ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब अखबारों के पन्नों के साथ साथ पलटते हैं इतिहास के पन्ने कि आज 24 मई का दिन क्यों है खास। सन 1819 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। वर्ष 1830 में अमेरिका में पहली बार यात्री रेल रोड सेवा की शुरुआत आई। साथ ही 1883 में न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ने वाली ब्रुकलिन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। सन 1896 में स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारी और गदर पार्टी के प्रमुख करतार सिंह रांभा का जन्म हुआ था। वर्ष 1920 में प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1930 में पायलट एमी जॉनसन की ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया तक की ऐतिहासिक उड़ान हुई। सन 1954 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल का आज के दिन जन्म हुआ था। और वर्ष 2007 में एमा निकोलसन रिपोर्ट यूरोपीय संघ की संसद में पारित हुआ था। ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी। और आइए अब आपका मनोरंजन करवाते हैं, सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। और श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं आज 24 मई का दिन है और आज ही के दिन 1955 में मशहूर संगीतकार राजेश रोशन का जन्म हुआ था, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में संगीत दिया है। इनके पिता बॉलीवुड के मशहूर संगीत निर्देशक थे, जिनका नाम था रोशन लाल नागरथ। इनके बड़े भाई रोशन फिल्म अभिनेता और फिल्में निर्देशक रहे हैं, साथ ही मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन के ये चाचा हैं। श्रोताओं राजेश रोशन ने अपनी फिल्मी दोनों से संगीत को सजाया है, साथ ही कई प्रकार के अच्छे अच्छे गीतों को संगीतबद्ध किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि राजेश रोशन जब 12 साल की थी तो इनके पिता का निधन हो गया और पिता की मृत्यु के बाद इनके परिवार ने नागरथ उपनाम के साथ साथ बाद में रोशन लगाना शुरू किया। और श्रोताओं और इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी माँ ईरा रोशन ने संगीतकार फयाज खान से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। और जब ये अपनी माँ के साथ जाया करते थे तो इन पर भी संगीत का गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण रहा कि इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी इन्होंने संगीत की बारीकियाँ सीखी। राजेश ने अपने करियर की शुरुआत सन 1974 में महमूद की फिल्म कुंवारा बाप से की थी, लेकिन राजेश रोशन को वास्तविक पहचान मिली 1975 की फिल्म जूली से, जिसके गाने बेहद ही लोकप्रिय हुए थे। इसके लिए उन्होंने पहला फिल्म फेयर का बेस्ट संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। और इसके बाद राजेश रोशन ने कई फिल्मों के लिए बेहतरीन संगीत दिया, जिनमें फिल्में मुख्य रही हैं स्वामी, देश परदेश, मिस्टर नटवालाल, काला पत्थर, खून भरी मांग, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और कृष आदि फिल्में महत्वपूर्ण रही हैं। 1975 से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले राजेश रोशन ने सभी बड़े फिल्मी निर्देशकों के साथ कार्य किया है, पर हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाने का श्रेय इन्हें महमूद को जाता है। श्रोताओं इस प्रकार से इन्होंने अपनी फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ अपने भाई राकेश रोशन द्वारा निर्देशित फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है, जो आज भी जारी है। राकेश रोशन के भाई साथ साथ श्रोताओं इन्होंने बहुत सी फिल्मों में संगीत की धुनें तैयार की है। संगीतकार राजेश रोशन को हम जन्मदिन की बधाइयां देते हुए सुनवाते हैं इनका संगीतबद्ध किया कार्यक्रम में ये गीत।

मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। जी हाँ, ये रचना है मशहूर शायर मजहूर सुल्तानपुरी की, जिनका पूरा नाम था असरार उल हसन खान। जी हाँ श्रोताओं, ये मशहूर उर्दू शायरों में से एक रहे हैं। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज, देश और साहित्य को नई दिशा दी है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में तैनात थे और मजरूह सुल्तानपुरी ने कई भाषाओं का अध्ययन किया है। उर्दू के अलावा अरबी भी, फारसी भी इन्होंने सीखी है। कॉलेज के दिनों में ही इनकी संगीत की प्रति रुचि हुई, और जबकि इनके पिता ने इन्हें संगीत से सीखने के लिए मना कर दिया था, पर शायरी के प्रति इनकी रुचि बढ़ती चली गई। सन 1935 में इन्होंने शायरी लिखनी शुरू की और यहीं से ये सुल्तानपुर में मुशायरे के लिए शायरी पढ़ा करते थे, और यहीं से इनके दिन प्रतिदिन शायरी लिखने का सिलसिला बढ़ता चला गया। श्रोताओं, इसके बाद ये शीघ्र ही मुंबई पहुँच गए और वहाँ पर जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बन गए और उम्दा शायरी लिखने लगे। इनकी शायरी को खूब सराहना मिली और यही कारण रहा कि इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू किया। और श्रोताओं, इन्होंने पहली बार गुरुदत्त की फिल्म बाज के लिए गीत लिखे, जिसके लिए इन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों के लिए बहुत ही मशहूर गीत लिखे हैं। फिल्मों में गीतों के लेखन के लिए इन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। फिल्म दोस्ती के लिए इन्होंने फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार प्राप्त किया, और वहीं भारत सरकार द्वारा 1995 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। श्रोताओं, पर 24 मई 2000 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनके लिखे गीत आज भी अमर हैं। सुनते हैं इनकी कलम से लिखा कार्यक्रम में ये गीत फिल्म दोस्ती से।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि इस भीषण गर्मी में अपना और अपनों का ध्यान रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का एक कार्यक्रम संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

यथा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे। कार्यक्रम की सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से श्रोताओं, जन जन की वाणी आकाशवाणी, देश के कोने कोने तक पहुंचती जन जन की वाणी, शहरों से लेकर गांव तक, पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक, मैदान से लेकर समुद्र तक पहुंचती जन जन की वाणी आकाशवाणी। जी हां श्रोताओं, आकाशवाणी के कार्यक्रम देश के 99% लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए देश में 420 से भी अधिक केंद्र कार्य कर रहे हैं और आकाशवाणी अपनी 23 भाषाओं और 189 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और इन कार्यक्रमों के प्रसारण का उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शहरों से लेकर गांव तक रेडियो के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ताकि जनता इनका लाभ उठा सके। श्रोताओं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गांव में, पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, जहां जाना आसान नहीं है, सुगम नहीं है, हर जगह पर रेडियो के कार्यक्रम आसानी से पहुंच रहे हैं ताकि वहां की लोक कला, साहित्य, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन और वहां की हर प्रकार की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके और रेडियो हर प्रकार से अपने उद्देश्य को लेकर पूरा कर रहा है। श्रोताओं, आप भी हमें लिख भेजिए अपने विचार कि किस प्रकार से सुदूरवर्ती गाँव में रेडियो के कार्यक्रमों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और किस प्रकार से रेडियो के कार्यक्रम जागरूक करने में सक्षम हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट करें 7088-0000-731 पर। जी हाँ श्रोताओं, आज की थीम है सुदूरवर्ती गांवों में रेडियो की भूमिका। लिख भेजिए अपने विचार व्हाट्सएप नंबर 7088-0000-731 पर।

कार्यक्रम में पहला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर रुद्र गुप्ता और साथ में इनके परिवारजन। लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से मैं उत्तराखंड देवभूमि की नई नई जानकारियां मिलती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। लेकिन कार्यक्रम में हमारे दूसरे श्रोता भी जुड़े हैं, उनसे हम आपसे सभी से कहना चाहेंगे कि सुबह 9:10 से आप सुन पाएंगे पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, लेकिन फिलहाल लेते हैं कार्यक्रम में अगला विचार। ये मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं भेरूलाल बागतरिया, धाकड़ उनेल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी की 90 दशक पर हार्दिक शुभकामनाएं। आकाशवाणी एक आस जनमानस तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम है। हर वर्ग के लोगों की रेडियो पसंद है। दूर दूर गांव देहात में जहां आज भी बिजली और मोबाइल लोगों की पहुंच से दूर है, उनका मनोरंजन का साधन आकाशवाणी ही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपके इस सुंदर से विचार के लिए। और ये भी हम कहना चाहेंगे कि आजकल तो मोबाइल ऐप के माध्यम से हमारे कार्यक्रम सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुँच रहे हैं और श्रोता आनंद भी ले रहे हैं। कार्यक्रम में अगले मैसेज हमारे श्रोताओं के हमें पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं ये गीत।

0: یہ میسج ہمیں لکھ بھیجا ہے وارسی کلب سے دولی میرگنج بریلی سے جیشان وارسی عمران شیخ کرولا مراد آباد سے ایوب خان اور ان کے پریوار جن. آپ لکھتے ہیں کہ آج کا ٹاپک اچھا ہے اور لکھتے ہیں بھارت کے گرامین کھیتروں بھی آکاشوانی آج بھی سوچنا شکشا منورنجن کا سب سے سشکت مادھیم مانا جاتا ہے. جہاں آدھونک تکنیک اور انٹرنیٹ کی پہنچ سیمت ہے وہاں آکاشوانی لوگوں تک صحیح اور وشوسنیہ جانکاری پہنچانے کا کاریہ کرتی ہے. کسانوں کے لیے موسم, کھیتی باڑی, بیج اور سرکاری یوجناؤں کی جانکاری ریڈیو کے مادھیم سے سرل بھاشا میں دی جاتی ہے, جس سے گرامین جیون کو نئی دشا ملتی ہے. آکاشوانی کیول سماچاروں تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ گرامین سنسکرتی, لوک گیت, لوک کلا, ساماجک جاگروکتا کو بڑھاوا دیتی ہے. سواستھ, شکشا, سوچھتا اور مہیلا سشکتیکرن جیسے وشو پر پرسارت کاریکرم گاؤں میں سکاراتمک بدلاؤ لانے کا کاریہ کرتے ہیں. آپدا یا سنکٹ کے سمے آکاشوانی لوگوں تک ترنت سوچنا پہنچا کر ان کی سہایتا کرتی ہے. جی بالکل, دھنیواد آپ کے سندر سے اور وستار سے میسج کے لیے. کاریکرم میں اگلا میسج ہمارے شروتا ہمیں لکھتے ہیں, آپ ایک گرام پنچایت بیٹھے نا پاٹن درگ چھتیس گڑھ سے بلکرن برما انجنی جیوتی پرہلاد راجندر ان کی پریوار جن. لکھتے ہیں کہ آج کی تھیم اچھی ہے اور لکھتے ہیں آج کل تو موبائل ایپ کے آ جانے سے سودور انچل میں ریڈیو سننا اور بھی آسان ہو گیا اور ہر جگہ اچھے کاریکرم سنے جاتے ہیں ریڈیو کے, اور صاف ستھرے کاریکرم جب ہمیں پراپت ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور ریڈیو سے ہمارا بے حد لگاؤ ہونا چاہیے. جی بالکل, ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ اسی پرکار اپنا پریم پور لگاؤ بنا رکھیں آکاشوانی کے ساتھ. شوتم کاریکرم بیچارہ آپ کے گیت جاری ہے اور صبح 9:10 سے یعنی کہ اب سے تھوڑی دیر بعد میں آپ سنیں گے کاریکرم پیپلز پدما اور آکاشوانی, اور اس کے بعد لیتے ہیں آپ کے میسج. لیکن چلتے چلتے بتانا چاہیں گے آج کے تھیم سودوروتی گاؤں میں ریڈیو کی بھومکا. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ اگلا.
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी.
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी. आज सुनते हैं समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत. इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है लोपा.
3: नीलेश भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
3: आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है.
4: मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज करवाया था. डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा. 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है. अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ. मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी एक किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके. मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है. मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूंगा. 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में दो बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब ये डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे. और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी. तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है. ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था. 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था. उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनू भाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे. तो चिनू भाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई. तो चिनू भाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़िए. मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है, उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया. लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी। तो उसको क्वालिटी लाइफ मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, शहर के न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन का कॉन्टेक्ट करना शुरू किया कि ऐसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके।
3: तो जब आप डॉक्टर से मिलने जाते थे तो उनका रिस्पांस कैसा था?
4: 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी। तो बहुत कठिन भी था क्योंकि लोगों को कंसेप्ट भी उस समय का पता नहीं था और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया और मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा। वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्त आश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे, उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवार जनों को अंगदान का महत्व समझाया।
3: उनका रिएक्शन कैसा था जब आप?
4: उसका वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है, लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो दो लोगों को नया जीवन मिलेगा और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है। और आप जब भी ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो दो व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है तो उनको नया जीवन मिलेगा, एक डायलिसिस की जो पीड़ा है उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी। और वो परिवार ने हाँ कही, मैं आज भी मानता हूँ कि वो दिव्य आत्मा की।
3: पहला अंगदान किया कब, आपके अंदर क्या महसूस हुआ और जिनको ये अंगदान किया गया उनका रिएक्शन क्या था? कुछ उनके बाद भी शायद आप मिलते हैं सभी लोगों को?
4: उस समय तो लोगों के साथ, क्योंकि हमारे लिए भी पहला इंसिडेंट था, लेकिन खुशी बहुत थी क्योंकि मैंने मेरे पिताजी की तकलीफें देखी थी। मैं देख रहा था कि उनकी पीड़ा क्या है, क्योंकि मैं मानता हूँ, उस समय भी मानता था और आज भी मानता हूँ कि जो व्यक्ति डायलिसिस पे होता है वो अपनी मृत्यु को हर एक दिन नजदीक से देखता है। जो दो व्यक्ति को हम लोगों डायलिसिस में से मुक्त करवा पाए वो एक खुशी थी।
3: पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते, उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान काट हुआ जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मरण हुआ था, तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है? और जब मैं आप डॉक्टरों से बात की तो वो जर्नी कैसी थी आपकी?
4: गोपा जी, उस समय गुजरात में केवल 5-7 ही किडनी ट्रांसप्लांट की अस्पताल थी। 2005-6 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। मैं बात करूं, जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया और दूसरे ही महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत के स्मिमेर अस्पताल में 24 साल का लड़का था वो ब्रेन डेड हुआ। हमने उनके पिताजी के साथ में किडनी डोनेशंस की बात कही, उन्होंने हाँ कही, तो हमने IKDRC को कांटेक्ट किया कि हम लोग एक और आज ब्रेन डेड पेशेंट है और उनका किडनी का दान करना है। और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का कॉल आया कि नरेश भाई, मुझे मालूम पड़ा कि आज आप किडनी का दान करवा रहे हो तो क्या लीवर भी पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो मैंने कहा कि गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा है तो लीवर भेजेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा वो चिंता आप छोड़ो, मैं बाकी की व्यवस्था करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये बातचीत करता हूँ किडनी के साथ में लीवर के दान के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको जितने भी ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है वो करवा। तो फिर लीवर का डोनेशन हम लोगों ने करवाया और वो लीवर हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया था, किडनी अहमदाबाद की IKDRC में डोनेट की गई।
3: ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है जब मतलब आप समझाने जाते हैं फैमिली को कि ब्रेन डेड, आपको ये न्यूज मिलती है भाई ये बंदा ब्रेन डेड हुआ है, तो वो प्रोसेस फैमिली को समझाना, फिर उसके ऑर्गन जब डोनेट करने जा रहे, वो प्रोसेस कितने टाइम तक की होती
4: है? जिसको भी आज ऑर्गन की जरूरत होती है या हमारे पास कभी भी कोई ब्रेन पेशेंट आता है तो पहले तो हम IKDRC को ही इन्फॉर्म कर देते थे क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल थी तो वहाँ ही पूरा ऑर्गन सब जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं तो हम सोटो को इन्फॉर्म करते हैं और सोटो उनका एलोकेशन करता है अलग अलग अस्पतालों में। पहले जो होता है स्टेट का जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट विद इन स्टेट होती है वो स्टेट के अलॉट किया जाता है, स्टेट में नहीं है जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट वो रोटो में जाता है, रीजन में जाता है, रीजन में नहीं होती है तो फिर नेशनल्स में जाता है और नेशनल में नहीं होती है तो इंटरनेशनल पेशेंट को अलॉट करते हैं। अभी जो आपने बात कही कि वो कितने समय में ऑर्गन्स का प्रोक्योर करना चाहिए, सबसे ज्यादा है हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है और वो समय शुरू होता है जब जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं, हार्ट का चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहां से वो समय शुरू होता है। फिर हार्ट प्रोक्योर करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना होता है और वहां से वापस एयरपोर्ट से जो रिसिपिएंट अस्पताल है वहां रिसिपिएंट अस्पताल में पहुंच के जो रिसिपिएंट है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके उसका हार्ट ब्लड सप्लाई शुरू करना वो समय होता है 4 घंटे का। एक एक मिनट बहुत क्रूशियल होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। तो हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में करना पड़ता है, लंग्स का 6 घंटे में करना पड़ता है, लीवर का 12 घंटे में करना पड़ता है, किडनी जो है वो 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होती है, हैंड्स का भी 6 घंटे के अंदर। लेकिन इस बीच में जितना कम समय में ट्रांसप्लांट होता है इतना अच्छा है।
3: देश में पहला अंगदान 2 हाथों का कृत्रिम द्वारा का सूरत में हुआ, कैसा रहा, उससे भी आप मिलने गए थे?
4: देश में पहला हैंड का डोनेशन सूरत में नहीं हुआ है। मैं बात करूं तो हैंड डोनेशंस का जो पूरे विश्व की बात करो तो 98 में यूएसए में पहला हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। हमारे देश में 2015 में हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई, कोची में पहला देश का हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन सूरत ने जो इतिहास बनाया है, जो माइलस्टोन बनाया है, ये है कि अक्टूबर 2021 में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन, 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था और उनका ट्रांसप्लांट पुणे के 31 साल की के लड़के में हुआ था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड़ की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशन करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो लड़की है, वो जो बच्ची है वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशन हुआ था और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशन की पहली घटना थी। और उसका जो ट्रांसप्लांट है वो ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था।

0: इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे। और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का उनके किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशन की वो पहली
1: हेलो
0: घटना थी। और उसका जो हृदय और जो फेफड़ा है वो रशिया और यूक्रेन के दो बच्चों में चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया था।
1: ऐसा कोई हिस्सा जो आपके दिल को छू गया हो, से बात की हो और आंखों में आंसू आ गए?
0: लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राजी करना, और ऐसे समय पे जब ये परिवार में रुदन है, आकरण है, और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना, और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हर एक केस अलग अलग है। लेकिन मुझे दो केस बहुत ही टच किए हैं। वो एक है जो 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था। और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया, और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, ऐसे बच्चों को, बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ के माता पिता को, के जिन्होंने ये निर्णय किया। बहुत सामान्य परिवार से वो लोग हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ। और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसे बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था, और अक्टूबर 2021 में जो लड़का था, वो लड़के का हैंड का डोनेशन करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स का डोनेशन करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का डोनेशन करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है।
1: अच्छा, ये पूरी जर्नी में आपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज किया?
0: मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी, और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे? तो मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ, वहीं सर अहमदाबाद ही रुके और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशन हुआ और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई, आज मुझे नया जीवन मिला है, तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम लोग मिलके एक ट्रस्ट बनाते हैं और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है, और टिकाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर 1 साल के बाद मैंने हाँ कही। हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई, बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी हम लोग साथ में बैठते थे, तो फिर इसमें सोच आई कि जो हमारा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं, तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे, और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया।
1: 25 सालों की मेहनत, जब पद्म से अवार्ड के लिए आपका नाम गया, जब आपको पता चला, तब फैमिली के फ्रेंड्स पर आपके रिएक्शन क्या?
0: मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है, और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेंडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेंडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो नींव रखी गई वो इतनी मजबूत नींव थी, जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई आज मजबूत है, जो बीज बोया बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है।
1: आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे और अंगदान जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे?
0: लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए। पहले लोग ऐसा कहते थे कि व्यक्ति का हृदय बंद हो गया तो उसकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। तो हमें ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना है और हमें उससे ऑर्गन डोनेशंस करवाना है। लोग ऐसा मानते हैं अंगदान नहीं करना चाहिए। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। आज लोग अंगों की बात छोड़िए, आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जब जो हम उनका अग्निदाह करते हैं, जो पार्थिव देखा, वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। तो ये सब उसमें से बाहर निकलना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं तो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य सदस्य को वो काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स इससे भी ज्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है, उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके अंगों का दान करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वडाप्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आजादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारा देश विकसित भारत होगा, वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था वो बीज आज वटवृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है।
1: तो ये थे दिनेश भाई माल्यवाला, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की वो बताया, और इनके लिए हूँ इनके बहुत ही आभारी।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी समाज में अंगदान को बढ़ावा देने वाले नीलेश विनोद चंद्रा मांडलेवाला के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी लोपा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे में। और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे मैसेज हमें मिल चुके हैं, लेकिन जो श्रोता लिखना चाह रहे हैं और अभी लिखने के लिए तैयार नहीं है उनको हम बताना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज की थीम है सुदूरवर्ती गाँव में रेडियो की भूमिका। लिख भेजिए जल्दी से अपने विचार और आपके विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम में पहले सुन लेते हैं ये गीत।

ये मैसेज हमें लिख भेजा है मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। लिखते हैं कि गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में रेडियो जानकारी और मनोरंजन का सबसे सस्ता और आसान जरिया है। ये किसानों और ग्रामीणों को देश दुनिया की खबरें और खेती बाड़ी की जरूरी जानकारी बताता है। मुसीबत के वक्त और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में रेडियो आज भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्या बात है मिसबा जी, बिल्कुल आपने सही लिखा है और निश्चित ही रेडियो के प्रयास सराहनीय माने जा रहे हैं और इस तरह के परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं कि लगातार हमारे दूरदराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रेडियो सुना जाता है। और कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता लिखते हैं, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना सनक, सानास याफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। लिखते हैं कि आज की थीम अच्छी है। लिखते हैं कि 90 वर्षों से आकाशवाणी के माध्यम से पूरी दुनिया के कोने कोने में, चाहे शहर हो या गांव, सभी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती रही है। बहुत से गाँव शहरों में टीवी नहीं है, रेडियो के माध्यम से ही नए नए समाचार प्राप्त किए जाते हैं और हमारे गांव में आज भी रेडियो सुना जाता है। और मेरे खुद के पास दो रेडियो हैं जी। बिल्कुल, हम भी आपसे इसी तरह कहेंगे कि आप रेडियो सुनने और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें कि जिस प्रकार से आप रेडियो से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते हैं, मनोरंजन प्राप्त करते हैं, उसी तरह हमारे दूसरे श्रोता भी रेडियो से जुड़ें और कार्यक्रमों से लाभान्वित हों। धन्यवाद इस विचार के लिए। कार्यक्रम में अगले विचार को लें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में मैसेज हमें लिखते हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फैसी, मोहम्मद जुनीद, मोहम्मद जुबीर, मोहम्मद मुकर्रम और साथ में इनके बहुत सारे मित्र लिखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है और लिखते हैं कि रेडियो एक ऐसी आवाज़ है जो हम तक नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों तक आसानी तक पहुंचती है और हमें जागरूक करता है कि किस प्रकार से हम कार्यक्रमों में सुनकर उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। और लिखते हैं इसके लिए कोई एंटीना वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, अब तो हम इसको AIR न्यूज़ से भी सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम देश विदेश में भी सुने जा सकते हैं और रेडियो का कोई मुकाबला नहीं है, रेडियो की जगह कोई ले नहीं सकता। धन्यवाद एम ए वहीद रुमानी जी और आपके सभी मित्रगण, बहुत आपने सही लिखा है और निश्चित ही अगर आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं तो लाभान्वित भी होंगी। और कार्यक्रम में आपको मैसेज लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज हमें लिखते हैं आप हैं भोपालगढ़।

स्थान से हैं श्रोता धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई, और जैसे कि आपने विषय रखा है सुदूर क्षेत्रों में रेडियो की भूमिका। आकाशवाणी वर्षों से अपना प्रसारण बेहतरीन और अच्छे तरीके से करता आ रहा है और हर कार्यक्रम अच्छे प्रसारित करता है। शहरों में नहीं बल्कि आकाशवाणी की पहुंच अब दूर दूर तक, सुदूर और क्षेत्रों में, छोटे छोटे गांव में, ढाणियों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भी, छोटे कस्बों में भी, खेतों में भी, जंगलों में भी, और हर जगह अपने प्रसारण कर रहा है और आकाशवाणी गुंजायमान हो रही है। आकाशवाणी ने अनेक तरह के कार्यक्रम, जिसमें सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और हर तरह की जानकारी, चाहे चिकित्सा संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, मनोरंजन संबंधी, कृषि संबंधी, मौसम संबंधी, हर तरह के कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं और श्रोता इनसे लाभान्वित भी होते हैं। जहाँ सुदूर क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँच नहीं थी, वहाँ भी अब आज का डिजिटल युग में मोबाइल ऐप के द्वारा आकाशवाणी अपने बेहतरीन तरीके से भूमिका निभा रही है और श्रोता लाभान्वित हो रहे हैं। हर प्रकार के कार्यक्रमों को और हर केंद्र को आजकल डिजिटल युग में स्पष्ट और स्वच्छ स्पष्ट तरीके से विश्व में कहीं भी सुना जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, इसी नारे को चरितार्थ करते हुए आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद धर्मेंद्र छिपा जी, सुंदर से और विस्तार से आपके मैसेज के लिए, और आपने इतना सब कुछ लिखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज हमें लिख भेजा है, आप हैं ऐशबाग लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, रश्मि भाभी और इनके परिवारजन। लिखते हैं कि जी हाँ, सुदूर गांव पहाड़ों पर भी आकाशवाणी की वाणी गूंजती है। रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें पल पल की खबरें देती रहती है। 90 वर्षों की सफलतापूर्वक सफर तय करने के लिए बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं ब्रिजेश कुमार सैनी सहारनपुर आईटीआई से, लिखते हैं आज की थीम बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि रेडियो के विचार सुनकर हर किसी के विचार बदल जाते हैं और ये काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी बिल्कुल धन्यवाद, अगर ऐसा सब कुछ है तो निश्चित ही हम अपने इस मिशन में कामयाब हो रहे हैं। धन्यवाद इस सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिखते हैं, आप हैं देहरादून चक्राता रोहित गांव मोहल्ला से, सुनील चावला, मीना, साक्षी, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी और साथ में इनके परिवारजन। लिखते हैं कि हर रविवार को सुनते हैं कार्यक्रम विचार, आपके गीत हमारे अच्छा लगता है। आप लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और साथ ही आज की थीम भी है वो भी बहुत अच्छी है। और लिखते हैं कि हम सुबह 6 बजे से कार्यक्रम लगाकर बैठ जाते हैं रेडियो के, और आजकल यही कर रहे हैं। रेडियो पर जो बताया जाता है वह अपने आप में ज्ञान से भरपूर होता है। रेडियो के कार्यक्रम हर हर गांव और सभी शहर तक पहुंच रहे हैं और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये हमारा सच्चा दोस्त है, हम लोग इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आपको आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद हमारे चक्राता रोड़ीत गांव मोहल्ला के श्रोता सुनील चावला और आपके परिवारजन। श्रोताओं, निश्चित ही ये जो सफ़र है आकाशवाणी का आपके बिना संभव नहीं था, और अगर आप हमारे साथ हैं निश्चित ही हम 90 तो क्या अनंत अनंत साल तक ये सफ़र को आगे जारी रख पाएंगे।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम विचार आपके गीत। हमारे आज के प्रोग्राम की थीम है सुदूरवर्ती गांव में रेडियो की भूमिका। ये मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, आप है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से, भाई रफत साहिब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और साथ में नगमा नाज मंसूरी। लिखते हैं कि आपको प्यार भरा आदाब, रेडियो के प्रसारण के 90 साल पूरे हो चुके हैं और लेकिन हम इस बात को कहना चाहेंगे कि पहले के दौर में जब कुछ भी नहीं था तो ऐसे में रेडियो के प्रसारण हम तक बहुत अच्छी तरह से तब से लेकर आज तक हम सुनते आ रहे हैं और रेडियो हमारा सच्चा साथी रहा है। ऐसा साथी रहा है जो हमें हर पल हर वक्त ये सूचना देता है और आज के दौर में भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो या तुरंत हमें जानकारी प्राप्त करनी हो हमें रेडियो के माध्यम से मिल जाती है, वो चाहे डॉक्टर की सलाह हो या फिर चुनाव के प्रसारण के कार्यक्रम के संबंध में हर प्रकार के मौसम की जानकारी हो या फिर बच्चों के लिए किसी प्रकार की जानकारी हमें रेडियो के माध्यम से मिल जाती है। रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और जो रेडियो के माध्यम से कोने कोने तक आजकल जानकारी पहुँच रही है। धन्यवाद श्रोताओं। मोहल्ला बारादरी महमूद खाए रामपुर से भाई रफत साहब और आपके परिवारजन आपके सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं नारायण स्टेट समस्तीपुर से हैं ललन मिश्रा और इनके परिवारजन लिखते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश के दूरस्थ क्षेत्रों में अपने विश्वसनीय और सुरक्षित जानकारी के प्रसारण के कारण आज भी रेडियो एक अमूल्य उपकरण है। इसके माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, उन्नत खेती के तरीके, महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षा का अभाव होता है तो उनके लिए रेडियो वरदान की तरह है क्योंकि एक श्रव्य माध्यम है जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर से विचार के लिए ललन मिश्रा जी।

कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजे हैं आप हैं काठुगोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना चिन्नापा से सुनीता राज खन्ना भानु राज और इनके परिवारजन लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से जो गाने प्रसारित किए जाते हैं न्यूज़ प्रसारित की जाती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही लिखते हैं कि चाहे पिक्चर ना हो लेकिन आवाज़ के माध्यम से हम हर कार्यक्रम को एहसास करते हैं और उन्हें सुनते हैं और उनका आनंद लेते हैं और चाहे ट्रैवलिंग करते वक्त हो या फिर दूसरे काम करते वक्त हम रेडियो को आसानी से सुन सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से विविध भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। धन्यवाद राजेश खन्ना जी आपके सुंदर से विचार के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदेव संगीता रानी पप्पू महक और साथ में इनके परिवारजन लिखते हैं कि आज की थीम अच्छी है और लिखते हैं कि आकाशवाणी देहरादून के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और लिखते हैं कि हमें सब कुछ सीखने को मिलता है रेडियो के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है। गर्मियों के दिनों में हमें ध्यान रखना है पक्षियों के लिए दाना पानी और पानी के बर्तन में रोटी के टुकड़े फ्रूट वगैरह आदि भी रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए धन्यवाद जी। बिल्कुल आपका भी धन्यवाद। गुलाब के फूलों की तरह जिस तरह से आपने हमें धन्यवाद दिया इसी तरह हम भी आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। श्रोताओं निश्चित ही हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि यह आपका अपना कार्यक्रम है जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम विचार आपकी गीत हमारी।

श्रोताओं, गांव में आजकल क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और गांव आजकल आधुनिक युग के गांव बन गए हैं, जहां हर प्रकार की सुविधा है और जिसके लिए रेडियो ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो के प्रसारण आपके लिए यूं ही अनंत काल तक जारी रहेंगे और चलते चलते एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में अपना और अपनों का ध्यान रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का कार्यक्रम सम्पन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी मंजुला नेगी की।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम विचार आपके गीत हमारी FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप योशिता पांडे से न्यूज सुनिए। सीएम धामी का आज नैनीताल दौरा, विभिन्न शासकीय कार्यों की करेंगे समीक्षा। प्रदेश में 29 अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती, आनंद स्वरूप बने गढ़वाल आयुक्त। आशीष चौहान को देहरादून का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल में उच्च शिक्षा की समीक्षा में गुणवत्तापूर्ण रोजगार उन्मुख और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, एक दिन में रिकॉर्ड 96,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, कुल संख्या 20,00,000 के पार पहुंची। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड जूडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की मतदाता सूची फ्रीज कर दी है। अब इसमें न तो नए वोटर जुड़ सकते हैं और न ही हटाए जा सकते हैं। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हटेगी रोक। प्रदेश में जनगणना का 99% का काम पूरा, 9 जिलों में 100% कार्य पूरा, 24 मई को पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में जूडो चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की करी शुरुआत। उत्तराखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक परिकल्पना उद्देश्य से 25 मई से द म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल 2026 का होगा आयोजन। मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय बैठक, चारधाम यात्रा, हीट वेव और मानसून तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर खटीमा की बेटी तीला सेन ने प्रदेश का नाम रोशन किया। उत्तराखंड में लू से बचाव की तैयारी, हर जिले में बनेंगे हीट स्ट्रोक रूम, आइस पैक, आईवी फ्लूड, ओआरएस सॉल्यूशन, आवश्यक दवाइयां और वेंटिलेटर से तत्काल मिलेगा उपचार। रिस्परा नदी पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बनाई गई दीवार, पुल और सड़क को किया ध्वस्त। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त चेतन। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इस कदर व्यस्त हो कि अपनी सेहत के लिए भी समय नहीं निकाल पाता है। फलस्वरूप आप आसानी से कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इन सभी मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है योग और मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। इसे करने के कई तरीके हैं, जिसके लिए न तो आपको अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव करना होगा और ना ही कोई खास तैयारी करनी होगी। लम्हे के इस प्रोग्राम में हम आपको मेडिटेशन क्या है, इसके कुछ आसान प्रकार, उपयोग और फायदों के बारे में बताएंगे। साथ ही प्रोग्राम के माध्यम से आपको इसे करने के सही नियम और समय से संबंधित जानकारी भी देंगे। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। मेडिटेशन के प्रकार और फायदों के बारे में जानने से पहले जरूरी होगा कि मेडिटेशन करने के तरीके के बारे में अच्छे से जान ले। दोस्तों, ध्यान लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है, लेकिन कई लोगों में मेडिटेशन को लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर मेडिटेशन कैसे करें। बता दें, मेडिटेशन करने के तरीके में कुछ खास नियम शामिल हैं। इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें अपनाकर आप मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैठने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाए। अगर बड़े लोग नीचे नहीं बैठ सकते, एक कुर्सी में आराम से बैठ सकते हैं। बैठने की स्थिति में ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, ताकि आप सही से सांस ले सके। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को आराम की अवस्था में ले जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, ताकि सभी मांसपेशियों को आराम मिल सके। इस प्रक्रिया को पैरों से शुरू करके अपने चेहरे तक लाए। सुनिश्चित करें कि पूरा शरीर आराम की अवस्था में है। आराम की अवस्था को हासिल करने के बाद अपने सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दे। अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से सांस लेने के लिए प्रेरित करे। इसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस ले और इसी प्रकार बाहर निकाले। ध्यान के लाभ को हासिल करने के लिए इस क्रिया को पूरे मन से कई बार दोहराए। तीसरे चरण में अब अपना ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप अपनी आत्मा या अंतर्मन पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए आप 1 से 5 तक गिनती करें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराए। वही आप किसी ऐसी चीज या विचार पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकते हैं जो आपको सुख का अनुभव देता है। अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं, तो संभव है कि आपका मन बार बार अन्य विचारों की ओर जाएगा। इस कारण जरूरी होगा कि मन में संतुलित की अवस्था को बनाने की कोशिश करें कि मन को भटकने से बचाए। अगर मन किसी कारण भटक जाए, तो उसे दोबारा केंद्रित करने का प्रयास करें। नींद आना, खुजली का होना, भावनाओं का अनुभव, डे ड्रीमिंग यानी जागते हुए सपने देखना, कई प्रकार के विचारों का लगातार आना और कई प्रकार की अनुभूति होती है जो मेडिटेशन को तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए जरूरी होगा कि आप अपने मन को समझिए कि ये केवल आपको विचलित करने वाला कारक है जो आपके मेडिटेशन के रास्ते में पत्थर बन सकते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें और मन को एकाग्र करें। इन सभी बाधाओं को पार करने के बाद ध्यान की चरम सीमा को हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए नियमित अभ्यास

0: की जरूरत होती है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने हथेलियों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर ध्यान की अवस्था से बाहर आए और अपनी हथेलियों को देखें। मेडिटेशन कैसे करें इस बारे में जानने के बाद लम्हे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम मेडिटेशन के प्रकार बताएंगे, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। इनमें से कुछ खास के बारे में हम आपको बताने की प्रयास करेंगे इस लम्हे प्रोग्राम में। आध्यात्मिक मेडिटेशन। आध्यात्मिक ध्यान आपको मोह माया से अलग दुनिया को दिखाने में मदद करती है। इसके निरंतर उपयोग से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। इससे विचारों और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नई मानसिक ऊर्जा का आप में संचार होता है। दूसरा है दोस्तों विपश्यना मेडिटेशन। ध्यान का ये तरीका सबसे प्राचीन माना गया है। बताया जाता है कि ध्यान के इस तरीके को करीब 2500 साल पहले प्रचारित और प्रसारित किया है। मेडिटेशन का ये प्रकार आज व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसके सहायता से मनुष्य अपने मन के भीतर झांककर खुद को समझने की कोशिश करता है। इसके सहायता से मनुष्य अपने विचारों व भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को विस्तार देने में समर्थ होता है। ज़ेन मेडिटेशन एक और तरीका है दोस्तों। मेडिटेशन का यह प्रकार चीनी बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। बता दें कि ध्यान का यह तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें दिमाग को एकाग्र करने पर खास ध्यान दिया जाता है। ध्यान की इस मुद्रा में आपको सुखासन मुद्रा में बैठकर और हाथों को आपस में मिलाते हुए बैठना होता है। ध्यान की इस स्थिति में आपको मुख्य रूप से अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। ध्यान का यह प्रकार आपको दिमागी रूप से विकसित और समृद्ध बनाने में सहायक माना जाता है। ये ध्यान आध्यात्मिक ध्यान का ही एक प्रकार है। इसमें आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र बिंदु मानकर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया आपको चेतन मन के परे ले जाकर अपने अचेतन मन में झांकने के लिए प्रेरित करती है। इससे दुनिया को समझना और उसे अनुभव करने के नजरिए में बदलाव महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अब सुनिए दोस्तों राजयोग मेडिटेशन के बारे में। राजयोग मेडिटेशन बहुत प्राचीन है। ध्यान का यह प्रकार आपको शांत रहने और खुद का निरीक्षण करने में मदद करता है। इससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता का भाव पनपता है। इस योग के खत्म बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के मंत्रों का उपयोग नहीं किया जाता है। योग की इस प्रक्रिया में आप अपनी आंखें खुली रखकर ध्यान लगा सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। मेडिटेशन के इस प्रकार में मनुष्य अपने भीतर यानी अचेतन मन में झांकने का प्रयास करता है। यह आपको भौतिक बाधाओं जैसे दुख सुख खुशी और गम से दूर ले जाकर अपने अस्तित्व का एहसास कराता है, जो आपको ये समझाने में मदद करता है कि भौतिक चीजों का दुनिया में कोई भी मोल नहीं है। तो दोस्तों कई प्रकार के योग और मेडिटेशन है, इसके बारे में तो हमने बात की। अब इसके बेनिफिट्स भी बहुत है दोस्तों। तनाव में कमी। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से तनाव कम होता है और दिमागी शांति का अनुभव होता है। मेडिटेशन के उपयोग से चिंता और अवसाद से भी छुटकारा पाने से सफलता हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन से दिमागी विकास होता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रोज मेडिटेशन कीजिए। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे FM 100.5 MHz पर। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

यह आवाजें थी विशाल डडलानी, शिल्पा राव और साथियों की। फिल्म का नाम था अनजाना अनजानी। गीता विशाल डडलानी का और संगीत विशाल शेखर का था। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का यही अगला गीत गुरु रंधावा की आवाज में। फिल्म का नाम है अर्जुन पटियाला। गीत को संगीत दिया है सचिन जी करने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आप सुन रहे थे केके और साथियों की आवाज़ों में गीत। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 होने को है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। पेश है हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं मसरूर सुल्तानपुरी को, जो केवल गीतकार नहीं थे बल्कि शब्दों के जादूगर थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को भावनाओं की गहराई दी। उन्होंने प्रेम, विरह, उम्मीद, शरारत और हर भावना को अपने गीतों में खूबसूरती से पिरोया। वे हिंदी सिनेमा के पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि गीत लिखना भी उतनी ही बड़ी कला है जितनी अभिनय या संगीत। मसरूर सुल्तानपुरी के गीत केवल सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। और आज का कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, ये हैं नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में हैं स्वीटी छाबड़ा। इसी गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं हमारे श्रोता हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत और सुलोचना भगत। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनका पूरा ही परिवार ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। ये अगली फरमाइश भेज रहे हैं गणेश भारद्वाज बिजलवाण, दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, राजू भाई, सुरेंद्र मुंडे पी, कुलदीप रावत, लियाकत रजाई वाले, बालावाला देहरादून उत्तराखंड से। ये फरमाइश आ रही है परी महल कासगंज से आदाब खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सयार बदायूं से, आफरीन खान, जमीर खान और इनका पूरा ही परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग। ये फरमाइश आ रही है दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। ये फरमाइश आ रही है ग्राम पंचायत कालेगांव से श्री सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजी जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख की। और इनका पूरा ही राजी जाधव परिवार, देशमुख परिवार और वायाल परिवार। ये अगली फरमाइश आ रही है पंजाबी बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, काशी निवास नागपुर से हैं हर्षल रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े की। ये फरमाइश गुजरात गांधीनगर ग्राम से परवीन सोनी, पूजा पयाल और जगदीश जोहरी की आ रही है। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव वर्मा की। ये फरमाइश भेज रहे हैं महेशवाड़ी तहसील मलकपुरा महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, वकील वाल्मीकि घाड़े, नीना जी घाड़े और स्वप्निल घाड़े। ये फरमाइश आ रही है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष मल्होत्रा, लाडो मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का की। ये फरमाइश कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना की आ रही है। ये फरमाइश है तेलंगाना भोरिंग से मोहम्मद बुराउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समेरा, आजमीन गुड़िया की आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत आकाशदीप फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम को कुछ पलों का हम विराम देंगे, क्योंकि इस समय आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी में श्री अंकित गौड़ा एमसी बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद आपसे पुनः भेंट होगी 11:20 पर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। तब तक आप सुनिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में एक बार पुनः हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं अघाड़ नंदघाड़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा। ये आ रही है फरमाइश चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी, इनका पूरा ही परिवार। ये फरमाइश भेज रहे हैं रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। ये फरमाइश आ रही है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर की, मोहल्ला हलवाई शेरकोट जिला बिजनौर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह। ये फरमाइश भेज रहे हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र मनहर वर्मा, ग्राम पंचायत बेठना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ये फरमाइश आ रही है सतबीर सिंह बंजारिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया की। ये हैं जिला सिरसा हरियाणा से, गांव है इनका खारसिया ढांडी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। ये हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, सरधना मेरठ से हैं, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन। कार्यक्रम में ये फरमाइश समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल, कुमारी सानिका देठे पाटिल, घामड़ गांव जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। और इनके साथ हैं बर्फन गांव नादुरा से शिवाजी उगले और राहुल उगले।

कार्यक्रम में ये फरमाइश मुकेश वर्मा, गौरव वर्मा, गरिमा शर्मा की है भिलाई छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजिल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है भाई रफत साहब, भाई सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बैन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज की मोहल्ला बारादरी, महमूद खां रामपुर से। ये फरमाइश आ रही है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, तुखना सदब, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं, आमना नसरीन बागवान, आसमा परवीन, राबिया ममताशा, आशु अहमद फूलवाले भोपाल राजस्थान से हैं, धर्मेंद्र छिम्पा और पूजा परिहार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और इनके साथ हैं पूजा परिहार। कार्यक्रम की ये फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये है विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से। शिवपर कलानी से हैं कमला देवी महोबिया, अने अनाया ईशु बाबा, शीतला चौक खंडवा से हैं विशाल सिंह, विवेक सिंह। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत फुटपाथ फिल्म से।

इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। एक और फरमाइश हम इसमें ले लेते हैं, ग्राम जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की।

श्रोता व्हाट्सएप फरमाइश में कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी, फरहास फरीन, फरहान फारिया और ताहिरा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और साथी अनारकली बाजार जरगांव से। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है, ये हैं ग्राम भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद। इसी गीत को सुन रहे हैं हमारे श्रोता श्री गणेश अभिकाट, श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, शानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। कार्यक्रम में ये गीत पुटपाक तेलंगाना से भवानी वेंकटेश, मास्टर मिथुन और महादेव। कार्यक्रम में ये सुन रहे हैं हमारे श्रोता हैं हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से मोनिका बालू, विनय कुमार। ये अगली फरमाइश आ रही है, ये है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है, ये है नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल, ग्राम जखड़गांव अहमदनगर से। ये फरमाइश आ रही है हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। ये फरमाइश भेज रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश में नर्मदा पार मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगस खातून की जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश से। ये फरमाइश है शाहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, संजय ठींगिया, राधा नामदेव, अनिल जैन और दर्शन भाई की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं, ये हैं मोहम्मद यासिन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, नई बस्ती गंज टुंडवारा से। ये कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश राजा, मुन्ना नाजिम अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं गणेशपुर गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख समा परवीन, शायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा। आप सबकी फरमाइश पर थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इसी गीत को कच्छ गुजरात से सुन रहे हैं गंगा वणकर, गोविंद, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल विजय, विराट विकास, रमेश महेश जयंती और इनका पूरा ही परिवार।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: व्हाट्सएप फरमाइश में ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं ग्राम खड़िया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, खुशलाल, अमरपाल, ऋषिपाल और सिद्धार्थ और साथ में हैं यश। इसी के गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं फिरोजिया, रोशनी, साइना, काजल और भाई सहजाद अली, बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं। ये हैं हमारे श्रोता जो हमें बार बार, एक ही श्रोता हमें कई बार मैसेज कर देते हैं जिससे हमारे जो नए श्रोता हैं वो जुड़ नहीं पाते कार्यक्रम में। तो हम अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक बार आपने मैसेज कर दिया, हो सकता है आपने जब हमने आपका नाम लिया

बताते हैं हमारे श्रोता हैं, ये हैं मोहल्ला मज़ार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमज़ान साहिब, अदनान अली मंसूर, अरमान अली मंसूरी, रयान चांदनी, अमंता और आशु भाई। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका रानी खोरवाल और भानु प्रकाश। इसी गीत के लिए फरमाइश आ रही है, ये हैं मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी, रोशन जहान सिद्दीकी, विशु अग्रवाल, दिव्यांशु यादव, ये हैं कैंट से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ये हमारे अगले श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल ढींगिया। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की। ये फरमाइश आ रही है हमारे पास भाई अनवर अंसारी, भाई नईम अंसारी, आफताब अंसारी, अफरोज अंसारी और बेगम राजिया की, शेरवानी कॉलेज गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। ये हमारे श्रोता हैं, ये जो हमें मैसेज कर रहे हैं ये हैं कमला नेगी, समीर सुमर सिंह नेगी, अंजलि और अभय, ये हैं देहरादून से। हमारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, टुशी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शो, जयप्रकाश शो, वसंतलाल शो, हीरा मोती, पन्नालाल शो। इसी गीत ये हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रामपुर यूपी से महबूब अली। अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल रॉय की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। ये फरमाइश आ रही है श्रोता रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और साथ में हैं लड्डू जी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलना सलमा, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। इसी गीत को सुन रहे हैं कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। आप सबकी फरमाइश पर आन मिलो सज आई मिलन की रात फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज दी है अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण ने।

इसी गीत को मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से सुन रहे विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रामा पुरी, पाली पुरी और सुनील पाठक, साथ में हैं वीके पुरी सा और इनके दोस्त विनोद पुरी।

श्रोता व्हाट्सएप फरमाइश, इस समय आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में ये जो अगली फरमाइश आ रही है, बाबू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से आ रही है। ये हैं बेबी सालिया डाबर, बेबी हलीमा डाबर, बेबी जिक्रा डाबर और बेबी आयशा खत्री की। साथ में घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिलाधार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं, ये हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी और बाबू भाई, साथ में भारती देवी। इसी गीत को

सुनना चाहते हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा और नंदिनी शर्मा। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास हरियाणा से आई है, बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया की। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव, शिया हर्षिता ध्रुव और निशांत ध्रुव। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो। मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड। मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसी, पलक लुबना और यश मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। कार्यक्रम में ये फरमाइश बार्ली नबई से आई है नवाब खान, इसरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीब खान की। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनावर, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम की। अबूधाबी यूएई से हैं शेख जियाउर रहमान। कार्यक्रम में ये फरमाइश फुलाई नगर बीट महाराष्ट्र से आई है, ये हैं बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा, आकांक्षा करवा। इसी गीत को सुन रहे हैं नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव। जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, साथ में हैं इनके संगीता जाधव। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इसी गीत को सुनना चाहते हैं शमशुल कमर, राही शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान खान, कलीम अंसारी गंज डुंडवारा से। ये फरमाइश आ रही है अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा की। आप सबकी फरमाइश पर प्यार का मौसम फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धनौरी तेलीवाला से इसी गीत को सुन रहे निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये फरमाइश भेज रहे हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुरवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। नथाना पंजाब से इसी गीत को सुन रहे हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम में ये फरमाइश हमारे पास आ रही है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा की। इसे गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। इसे गीत को सुनना चाहते हैं तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आरिफ शेख। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है मोटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी साक लोलमानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरवी, साथ में है वैष्णव कलोनी, सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। कार्यक्रम में इस गीत को सुनना चाहते हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयु श्रीवास, विवेक श्रीवास और बेबी आयुषी श्रीवास। कोरबी बेलतारा छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू और मानस राज। ये फरमाइश आ रही है हमारे श्रोता हैं जलालाबाद शामली यूपी से राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और जिशान मंसूरी की। ये फरमाइश आ रही है अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, ये हैं नाचुन रोड संजय सालन संजय कॉलोनी खंडवा से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहते हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। इसी गीत के लिए फरमाइश आ रही है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा की, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं साहिना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और मशरूर अली खालापार मुजफ्फरनगर से। ये फरमाइश आ रही है आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग की सहारनपुर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली। ये फरमाइश आ रही है ये जो हमारे श्रोता हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष, वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से। ये फरमाइश नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद साहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं, जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर, मखाइल जैनब मुजावर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं करणवीर हाउस भूचों कैचिनिया भटिंडा पंजाब से। ये हैं परम सिंह चौड़ा, मंजीत चौड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर और वरिंदर। आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत दोस्ती फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। इसी गीत को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुन रहे छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नावदेव और धर्मदास वाधवानी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से सुन रहे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा।

0: श्रोतो, इसी गीत के साथ अपनी होस्ट और दोस्त श्रुति शर्मा को आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 8वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल

किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अंकिता आप्टे।
2: नमस्कार, मैं अंकिता आप्टे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी रघुवीर जी कि जब आपको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने की जानकारी मिली तब आपके मन में कैसी भावनाएं उमड़ी, क्योंकि एक तमाशा जैसी लोक कला को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना ये पहली बार हो रहा है, तो क्या भावनाएं थी आपकी?
4: बहुत अचंभित हुआ था मैं, मुझे ऐसा लगा था मैं कहां हूं, स्वर्ग में हूँ या धरती पर हूँ, और इतना भारी पद्मश्री खिताब मेरे को मिला है ये सुनकर मेरे जो पुराने अनुभव वो सब मेरे सामने आ गए और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया।
3: तो रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी वो अपने परिवार से आपको मिली है, अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
4: वैसा तो मेरा जन्म तमाशे में ही हुआ है, बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया, तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते हैं, बालाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर इसका ओपनिंग था, तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे, जन्म के पांचवे दिन मैं स्टेज पे गया, ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई, हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोषना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने तमाशा निकाला जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांचे चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का स्टेज पे आया, वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
3: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और ये जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
4: मेरी माँ का बहुत बुरा हाल था, पैसे नहीं थे और हम चार बच्चों को पोषना माँ के लिए बहुत बड़ी बात थी, तो माँ ने 1 साल दूसरे तमाशे में नौकरी की जो आनंद लोकनाट्य करके है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला, तो हमने सोचा हम चारों बहन की माँ को साथ देना चाहिए, तो मेरी बड़ी बहन अनीता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा, और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने के, और पहले ऐसा था सब कुटुम्ब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर बीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में हमारे सबकी चौथी यत्ता हो गई है।
3: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपके इसके पीछे क्या सोच थी?
4: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो स्टेज पे लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का, तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा मगर बाप के सरीका नहीं, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
3: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
4: बहुत भारी तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहे गाने नहीं रहते और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में, तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आई च काली बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी भारी था वो, और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
3: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा वो कैसा है?
4: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे है। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा रजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था, मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी, अगर मैं गंभीर भूमिका करूँ फिर भी लोग हंसते थे, तो दौर बहुत अच्छा था।
3: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा, और हाँ। ये आपने भी किया कि जो मुद्दे हाँ। सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई, तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
4: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है, जब महाराज गनी में कावा करते थे उसमें शायरी होती थी और शायर के पेट में से ही तमाशा निकला, तो पहले से ही यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है, तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो 10 जाने बचाएंगी, ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का, तुम सीखो प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
3: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी, क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
4: तमाशा लोगों की जान था, जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे, तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा।

0: और उनकी कर्मणों कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो माचा है।
1: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे, वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे।
0: हाँ
1: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है, और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है। तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाचे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाचा देते है। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाचा देखते हैं।
1: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
0: तमाचा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाचा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाचा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
1: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
0: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा, और आधुनिक यंत्र ना तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अभी इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
1: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
0: जब से ये पुकार हुई है 25 जनवरी को, ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाचे में जो लोग आते हैं और बहुत शांति से तमाचा सुन रहे हैं, मेरा तमाचा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते है, टाटा बाय बाय करते, हमारी वीडियो निकालते है, हमारे साथ फोटो निकालते है, हमको धन्यवाद करते है, ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
1: रघुवीर जी, आपके इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाड़िया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
0: बहुत बेहतरीन रही है
1: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
0: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के अंग पे पूरा बदन ढका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं, और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
1: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
0: नहीं नहीं बदला है, 1 महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले उनको भी पूछा, भाई अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है, तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भिंगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, वो भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं, इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
1: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो
0: होता है।
1: इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जरूर आइए, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाचा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है, कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत द्वारा कर सकते हैं। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगा है।
1: रघुवीर जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आपटे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:24 हुए हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। श्रोताओं, आज पीपुल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी क्रमशः आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर, दोपहर 3:10 पर, अपराह्न 4:10 पर, सायं 5:10 पर, सायं 6:10 पर और सायं 7:25 पर ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अपराह्न 4:02 पर आप सुनेंगे गुलाम साबिर से राग शुद्ध सारंग में और धुन में सारंगी वादन।

आज अपराह्न 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे संगीत निदेशक राजेश रोशन पर के धुन तैयार किए गए गीत। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं हेलो फ्रेंड्स में। आज सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। सायं 5:45 पर श्रोता सुनेंगे पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। इसमें श्रोता सुनेंगे श्रोताओं का अनुरोध माँ।

किसान साथी कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं सायं 7 बजे। आज इसमें आप सुनेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख समस्या विषय पर डॉक्टर संदीप कुमार से विकास चमोले की बातचीत। रात्रि 8 बजे काव्यांजलि कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री विनय कुमार की कविताएं। सोमेश कुमार की गायी गजलें होंगी। आज रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को है। आप सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल।
1: सारे कार्टून देखता है, मैं भी सारे कार्टून देखता हूँ। वो भी
2: बच्चों, संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: जो जय हिंद बाल मंडल कार्यक्रम में अर्चना दीदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। आशा है आप सभी समर हॉलीडेज को एंजॉय करने लग गए होंगे या कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कब उनकी छुट्टियां पड़े। बच्चों इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में आप अपनी हॉबीज को जरूर एनहांस करिएगा, साथ ही अपने हॉलिडे होमवर्क्स को भी टाइमली कंप्लीट करिएगा। बच्चों छुट्टियां हमें रिलैक्स करने और साथ ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए होती हैं, जिसमें हम घूमने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, मज़े करते हैं। ऐसे ही एक बेस्ट फ्रेंड हम सभी का होता है। आप जानना चाहोगे ऐसा वो कौन सा फ्रेंड है? बुक्स यानी पुस्तकें हमारी मित्र होती हैं। आइए आज इस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो बच्चों आज के समय में मोबाइल और टीवी ने हमारी रीडिंग हैबिट पर काफ़ी असर डाला है, लेकिन उसके बावजूद आज भी पुस्तकों से ज़्यादा सच्चा मित्र कोई नहीं। पुस्तकें मन को शांति और सही दिशा देती हैं। अच्छी पुस्तकें हमें नई नई बातों को सिखाती हैं। आपने महसूस किया होगा कि कहानियों की पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाती हैं, तो वहीं ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमें कई तरह की नई नई जानकारियां देती हैं। पुस्तकें पढ़ने से भाषा सुधरती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो जब पुस्तकें पढ़ने का इतना फायदा है तो क्यों ना हमें पुस्तकों को ही अपना सच्चा मित्र मानना चाहिए। तो बच्चों इन गर्मियों की छुट्टियों में आप पुस्तकें जरूर पढ़िएगा और अपने ज्ञान के भंडार को भी भरिएगा। आइए एक छोटी सी बच्ची हमें कुछ कहना चाह रही है, उसकी बातों को भी सुनते हैं। वो हमें भला क्या कहना चाह रही होगी?
1: नमस्कार दीदी, मेरा नाम परिधि है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी पोम लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी और सच्ची मित्र होती है। मेरी पोम का नाम है A Silent Companion of Life. In a world of voices loud and bright, where days can fade too fast into night, there lies a friend, both quiet

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं

मदर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया गया। राष्ट्रमंडल दिवस उन देशों के बीच यूनिटी, सहयोग और फ्रेंडशिप का प्रतीक दिवस है जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट रहे थे और आज राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं। बच्चों, आपको इस दिवस का महत्व व कारण बताते चलते हैं। तो इस डे को सेलिब्रेट करने का कारण युवाओं को वैश्विक भाईचारे का संदेश देना है। दूसरा, सदस्य देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ाना माना जा सकता है। इसी के साथ शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य होता है। साथ ही लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकार को प्रोत्साहित करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। भारत राष्ट्रमंडल खेलों, शिक्षा, व्यापार और इंटरनेशनल हेल्प में कॉमनवेल्थ का मेंबर होने के नाते काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा है। तो बच्चों, ये तो थी जानकारी आज के विशेष डे के बारे में। आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अपनी धुन के हैं पूरे पक्के, कोई न समझे इनको अनारी। लंबा सफर है तेरी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है, पर न रुकेंगे चलते चलेंगे, ये सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी।
1: तो बच्चों आज हम भी एक गाड़ी चलाते हैं और आपको एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनाते हैं देवभूमि पब्लिक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल के बच्चों द्वारा।

0: सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके प्रायोजक हैं देवभूमि पब्लिक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल। आइए आनंद लेते हैं इस प्रायोजित कार्यक्रम का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवभूमि पब्लिक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड।
2: बाल मंडल में आज की विशेष प्रस्तुति लेकर आए हैं देवभूमि पब्लिक स्कूल श्रीनगर उत्तराखंड के बच्चे। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेयांशी।
3: मेरा नाम श्रेयांशी है, मैं देवभूमि पब्लिक स्कूल से हूँ। आज देवभूमि पब्लिक स्कूल इस प्रोग्राम की शुरुआत एक मॉर्निंग असेंबली प्रेयर से स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है सरस्वती वंदना। एंड आई वुड लाइक दैट

देवभूमि पब्लिक स्कूल द्वारा ये एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। अब हमारे सामने देवभूमि पब्लिक स्कूल की दो छात्राएं आपके सामने एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रही हैं। प्लीज़ वेलकम आज्ञा एंड दिव्यांशी फॉर देयर सॉन्ग।

0: इन स्टूडेंट्स के द्वारा ये एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग इन्होंने परफॉर्म करा है। मैं आप सभी को एक अचीवर से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने देवभूमि पब्लिक स्कूल से क्लास 10th बोर्ड में 90% अचीव करा है। आई वुड लाइक टू कॉल नंदिनी टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल नंदिनी, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर परसेंटेज एंड एवरी वन इज सो हैप्पी ऑफ यू। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी एंड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका क्या रूटीन था स्टडी के दौरान, इस टाइम पर आपने किस तरह से मेहनत करा एंड आप इतने लंबे टाइम तक किस तरह से फोकस रही इस चीज़ के लिए।
1: सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेरा यही था कि पूरे साल भर जैसे 1-2 घंटा कंसिस्टेंट रहना, और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि एक डिसिप्लिन में रहना रेगुलरली कि हाँ मुझे पढ़ना है तो इस टाइम पे पढ़ना ही है, मतलब आलस नहीं करना है। और सबसे बढ़िया कि टीचर्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए।
0: कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि दे फील सो डिप्रेस्ड और लाइक दे डोंट हैव द मूड टू स्टडी, सो आप उस टाइम पे उन्हें क्या ऐसा मोटिवेशन देना चाहेंगे कि दे आर लाइक यस वी नीड टू स्टडी?
1: हाँ ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि जिस टाइम जैसे पढ़ने का मन नहीं था और लग रहा था कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट टीचर्स का सपोर्ट और अपने पेरेंट्स से सलाह लेना कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगे ही।
0: आने वाले स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे और क्या स्ट्रैटेजीज देना चाहेंगे कि वो आगे और बेटर परफॉर्म कर सकें?
1: तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहना, अपना टारगेट एक मतलब रखना ही कि हाँ मुझे इतना अचीव करना ही है, तो उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी।
0: थैंक यू सो मच नंदिनी फॉर कमिंग विद अस एंड गिविंग योर स्पेशल टाइम टू अस। अब हमारे सामने देवभूमि पब्लिक स्कूल के एक स्टूडेंट सिद्धार्थ, जो कि मदर्स डे से रिलेटेड एक स्पीच प्रेजेंट करना चाहते हैं।
2: गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम सिद्धार्थ। द मदर्स डे इज

0: celebration of great strength, sacrifices and love by our mother. We all know that mother is one of the most important part of our family because she cooks for us, take care of us with all the best way possible. We can't repay what she has done for us, but we can promise to respect her in all way. In the end, I would like to say that she is my mother, but to me, she is my world. Thank you.
1: थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने इतने वंडरफुल वर्ड से इतने छोटे टाइम में काफ़ी सारे लोगों का दिल जीत लिया. अब ये प्रोग्राम AIR FM देहरादून देवभूमि पब्लिक स्कूल आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना होती है, इसी टाइप से हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में भी देशभक्ति की भावना है. और इसी भावना को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए देवभूमि पब्लिक स्कूल की कुछ स्टूडेंट्स सुहानी, रिया, रिया राणा, आरुषि, इशिका, दिया आपके सामने आ रही हैं एक सॉन्ग प्रेजेंट करने के लिए. And please welcome them with a huge round of applause.

0: इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंसेज बाई द स्टूडेंट. जिस तरह से इन स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फिडेंस था, देश के लिए इतना जुनून था, उस तरह से आई होप आप सभी के बीच में भी होगा. अभी आर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मिस्टर भगवान सिंह धनाई आर कमिंग ऑन स्टेज टू प्रेजेंट हिज ब्यूटिफुल वर्ड्स टू से समथिंग टू स्टूडेंट्स एंड आई वुड लाइक टू कॉल देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज.
1: देवभूमि पब्लिक स्कूल, विगत वर्षों स्टूडेंट्स ने प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी प्रगति की, चाहे खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शैक्षणिक गतिविधियां हो, सह शैक्षणिक गतिविधियां हो. पूर्व छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज से लेके IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचे हैं और वर्तमान समय में हमारी कोशिश है कि ये सारा ट्रेंड चलता रहे, बच्चे अच्छा पढ़ें, समाज के लिए अच्छे नागरिक हों. सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य समाज के लिए सुशिक्षित, सभ्य एवं जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है. मेरी आशा है कि सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे और समाज के लिए अच्छा करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, समस्त समाज को एक अच्छा संदेश देंगे. थैंक यू.
0: Thank you so much, sir, for your wonderful speech and wonderful words. Students are super impressed by all this speech. अब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में गढ़वाली कितनी ही फेमस है, तो अभी आप सभी के बीच में एक स्टूडेंट देवभूमि पब्लिक स्कूल से अर्णव एक गढ़वाली सॉन्ग प्रेजेंट करने जा रहा है. पाने के बाद आते धोपा पाने के बाद.

0: अरे दिल का यादम आ जामड़ की यादम।
1: हम अपने लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि देवभूमि पब्लिक स्कूल एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर जगह पे है। जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्कूल सिटीज एरियाज में रहते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। एक टाउन एरिया में है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर, स्टूडेंट्स का मन भी लगा रहता है। हम डेली अपने सामने अलकनंदा रिवर को बहते हुए देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा माहौल स्टूडेंट्स के बीच में क्रिएट करता है। आई थिंक दैट इट्स द ब्यूटिफुल प्लेस फॉर अ स्कूल टू हैव। एंड अभी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा रहता है कि समटाइम्स दे वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू क्विट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हार मान लेते हैं, लाइक दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ। इसी टाइप में हमारे स्कूल के दो स्टूडेंट आपके सामने एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहेंगे, जिससे वो आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि किस टाइप से आप

टफ टाइम में भी अपनी हिम्मत रख सकते हैं और खुद को मोटिवेट कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू कॉल अवनी एंड वैष्णवी फॉर प्रेजेंटिंग देयर सॉन्ग. प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज.

0: such a beautiful performance by Avni and Vaishnavi. I just wanted to say, just don't give up, just believe in yourself and God is there always for you. इसी के साथ हमारे सामने खुशी आ रही है जो कि एक सॉन्ग आप सभी के साथ प्रेजेंट करने जाएगी and I am glad to show her confidence that in so many students she is the one who just said that I would like to sing a song.
1: Meru nakkun tholo churakan ke bachalo churakan ke bachalo mera las gadas ko re majmalat jumando meru nakkun tholo majmalat jumando meru sunkun lo मजुमालत जुमान दो मेरो नक्कु नत लो ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: जैसे कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से ही अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, एक छोटा बच्चा सबसे पहले अपनी मम्मी के पास ही जाता है, हर दुख दर्द सब मम्मी से ही शेयर करता है एंड उसी से रिलेटेड हमारे स्कूल के दो स्टूडेंट्स अभिनव एंड अनुराग आप सभी के सामने एक सॉन्ग प्रेजेंट करना चाहेंगे।

अब हमारे सामने देवभूमि पब्लिक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स साक्षी, निशी, आयुषी, आकृति, प्रकृति और अभिजीत, विनीत, आरव आप सभी के सामने गढ़वाली सॉन्ग प्रेजेंट करेंगे एंड मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारी तालियों के साथ इनका स्वागत करें।

मैं आशा करती हूँ कि देवभूमि पब्लिक स्कूल की ये प्रस्तुति आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। मैं श्रेयांशी, आज का आपका और मेरा संपर्क इतना ही था। थैंक यू।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवभूमि पब्लिक स्कूल श्रीनगर गढ़वा।
1: तो बच्चों ये था हमारा आज का बाल मंडल कार्यक्रम। हमें आशा है आपको हमेशा की तरह आनंद आया होगा। आप अर्चना दीदी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। जय हिंद।
2: साड़ी कार्टून देखता है, मैं भी साड़ी कार्टून देखता हूँ। दीदी
3: बच्चों संडे को बाल मंडल में जरूर आना।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 1 बजने को है, अब कुछ ही पलों में समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांक्सी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से पीपल्स पद्माओन आकाशवाणी में सुश्री कोलकालकल देव की अम्मा जी से बातचीत।

0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से पंजीकरण कराने की अपील की। केंद्रीय गृह सचिव ने वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जिले के सीमांत गांवों के लिए दीर्घकालिक विकास योजनाओं की प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और वन विभाग वन क्षेत्रों और नापखेतों में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण कराने की अपील की है। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार राज्य के हित में आगे बढ़ रही है और विकास की नई इबारत गढ़ रही है। श्री धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि इस समय यात्रियों की संख्या ज्यादा है, जो एक चुनौती है, फिर भी श्रद्धालुओं की यात्रा व्यवस्थित और सुगम हो, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
2: देखिए, चार धाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं।
1: चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने यात्रा मार्ग और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। टीम ने सिरोबगढ़, गोवा बीच, धारी देवी मंदिर, फरासू स्वीत, पॉलिटेक्निक हॉल, आवास विकास मैदान तथा NIT मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। यात्रा के दौरान बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी श्रीनगर ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जिला सभागार गोपेश्वर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सर्वांगीण विकास, विशेष रूप से वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जिले के सीमांत गांवों के लिए बड़ी एवं दीर्घकालिक विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं, ताकि इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाना

0: आवश्यक है। धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने श्री रुद्रनाथ मंदिर ट्रैक रूट के सुनियोजित विकास हेतु तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह सचिव ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनपद में टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में गृह सचिव महोदय ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान की प्रगति की भी जानकारी ली। अल्मोड़ा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में और महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत के निर्देश पर संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। उप महानिरीक्षक परीक्षित बेहरा ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आम जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से लोगों को दैनिक दिनचर्या में साइकिल चलाने के लाभों से परिचित कराया गया।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार होम स्टे योजना, स्टार गेजिंग और बर्ड वाचिंग जैसे नए पर्यटन आयामों को बढ़ावा दे रही है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना में अब कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। पर्यटन मंत्री ने मसूरी स्थित सोहम हिमालयन सेंटर का दौरा कर वहां स्थापित संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को सहेजने के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड का अनूठा संग्रह बताया। सतपाल महाराज ने कहा कि संग्रहालय नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य कर रहा है।
2: हिमालयन सेंटर को देखने का मौका मिला और यहाँ उत्तराखंड की विरासत जो है वो सजाई हुई है। अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड के बारे में सारा कुछ देखने को यहाँ मिला। मैं समझता हूँ कि यहाँ के पर्यटकों को यहाँ आकर के ये जो हमारा हिमालयन सेंटर है ये देखना चाहिए। निश्चित रूप में लोग यहाँ आके देखेंगे तो सीखेंगे। लोगों के पास काफी विरासत है, काफी पुस्तकें होती हैं, तो वो अपनी रिच लाइब्रेरी को करें। और हमारे केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने इसका डिजिटल क्या किया है सिस्टम, तो डिजिटाइजेशन वो कर रहे हैं ताकि ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाए। और अभी तो होमस्टे पर हमारा जोर है, होमस्टे के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि होमस्टे का विस्तार हो। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे बनेंगे तो लोगों को वहां पर रहने का एक मौका मिलेगा। मैं होमस्टे को इसलिए प्रमोट करता हूं कि लोकल लोगों को काम देता है, लोगों को वापस लाता है गांव के अंदर, और गांव के अंदर जो हमारा क्वादा, झंगोरा, मंडवा, ये सब चीजें जो लोकल व्यंजन है वो लोगों को खाने को मिलते हैं।
0: पर्यटन मंत्री ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को और विकसित किया जाएगा और थिएटर एवं आर्ट गैलरी बनाई जाएगी ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित किया जा सके। इस दौरान महाराज ने मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहे अवैध निर्माणों पर चिंता जताते हुए ऐसे निर्माणों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात कही। पौड़ी जिले में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग अब वन क्षेत्रों, नाप खेतों अथवा आसपास के क्षेत्रों में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। संभागीय वन अधिकारी गढ़वाल महातिम यादव ने कहा कि कई मामलों में आग जंगलों से निकलकर नाप खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे बड़े नुकसान की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में आग लगाने वाले अथवा लापरवाही बरतने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: सभी टीमें हमारी 34 क्रू स्टेशन और जितने भी हमारे फायर वॉचर जो हमने नियोजित किए हैं और जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं, वो दिन और रात अथक प्रयास से वनाग्नि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें काफी सफलता भी मिल रही है। परंतु जो शरारती तत्व हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार से वन क्षेत्रों में आग लगाए जाने की घटनाएं की जा रही है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी घटनाएं होंगी हम उसमें प्राथमिकी निश्चित तौर से दर्ज करवाएंगे।
0: उधर नई टिहरी जिला मुख्यालय के आसपास स्थित बूडोगी, चवालखेत और विभिन्न पिकनिक स्पॉट क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी पुनीत तोमर ने बताया कि वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं।
4: हमारी टीम जो है अभी इस समय है और सारे इक्विपमेंट वगैरह उनके पास है और इस बार जो है हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया है कि सभी जो हमारे फायर वॉचर उनका इंश्योरेंस हो जाए

0: कि उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप जो सर्वप्रथम जो है अपनी सेफ्टी और हाइड्रेशन उस पर ध्यान दें ताकि कोई अप्रिय घटना न घट पाए।
1: वहीं प्रदेश में वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से जंगलों में आग से बचाव को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से पंजीकरण कराने की अपील की। केंद्रीय गृह सचिव ने वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जिले के सीमांत गांवों के लिए दीर्घकालिक विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए मसूरी के जॉर्ज एवरेज क्षेत्र को विकसित किया जाएगा और वन विभाग वन क्षेत्रों और नाप खेतों में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, आजकल गर्मी काफी बढ़ गई है। इस मौसम में आप अपना विशेष ख्याल रखें। इस गर्मी ने जीवन की रफ्तार को भी प्रभावित किया है। आप ध्यान देते होंगे कि जब सूरज की तपिश बढ़ती है तो शरीर ही नहीं मन भी ठंडक तलाशने लगता है, और ऐसे समय में सावधानी और संयम सबसे बड़ा बचाव है। और अगर आप घर में हैं या सफर पे निकले हुए हैं तो ऐसे में अगर संगीत का साथ हो तो क्या ही बात है। तो बस आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में कुछ मधुर गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सबके लिए।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म में आशा भोसले के आवाज में ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मेरे हमसफर फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओ, गर्मी चाहे कितनी ही प्रचंड क्यों ना हो, एक ठंडी सी छांव, एक प्याला पानी और अपनों का स्नेह, और उसके साथ अगर जुड़ जाए आकाशवाणी देहरादून, तो मन को सुकून दे जाता है। इस भीषण गर्मी में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आप बार बार पानी पीते रहें, प्यास लगने का इंतजार न करें, धूप में निकलते समय सिर और चेहरे को ढकें, जरूरी है तो ही बाहर निकलें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द को नजरअंदाज ना करें। अगर ऐसी कोई समस्या है तो पहले आराम करें और जरूरी हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर आप खुश हैं ना तो हम जैसे जो यहाँ पर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं उन्हें भी खुशी मिलती है कि हमारे श्रोता स्वस्थ हैं और जीवन को आनंद के साथ जी रहे हैं। और हमारा काम तो है आपको प्यारे प्यारे गीत सुनाना। तो लीजिए, पेश है आप सबके लिए कार्यक्रम का ये बेहतरीन गीत।

श्रोताओ, गर्मियों का मौसम आते ही बच्चों की छुट्टियां पड़ने लगती हैं और हम निकल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर, या यूं कहें कि चार धाम यात्रा चल रही है। तो ऐसे में हर किसी का मन करता है कि आस्था के पथ पर चलें। पर यात्रा केवल एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि नए अनुभवों और यादों का सुंदर सफर है। तो ऐसे में अगर आप इसे सुंदर और सुखद बनाना चाहते हैं तो भीड़ के साथ न जाएं। जिन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उन दिनों जाने से बचें और यातायात के नियमों का पालन करें। जो प्रशासन द्वारा नियम बनाए गए हैं उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी यात्रा तभी सुखद है जब आपके जाने से किसी अन्य को या वहाँ रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। आपसी वार्तालाप अच्छा रखें, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें, है ना। तो यात्रा में जाने से पहले विशेष ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। अगर आपको हृदय रोग से संबंधित, अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी परामर्श के बाद ही पहाड़ों की तरफ जाएं, क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है। तो ऐसे में सांस लेने में, चलने में आपको परेशानी हो सकती है और वो जान की आफत भी बन सकती है। तो यात्रा में स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं, गर्म कपड़े रखें, रेनकोट रखें और जो दवाइयां आप लेते आए हैं उनको जरूर रखें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हुए धीरे धीरे चलें, जल्दीबाजी ना करें। जहां भी आपको थकान लगती है वहां पर आराम जरूर करें, पर्याप्त पानी पीते रहें और हल्का भोजन करें। मौसम की जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आपसे प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आज आप यात्रा नहीं कर सकते तो प्लीज उसे सुनें, क्योंकि प्रशासन आपके साथ है। हमारे उत्तराखंड में आने वाला हर यात्री हमारा अतिथि है और उसकी सुरक्षा हमारे प्रशासन की और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब आपसे कहा जाए कि यात्रा में थोड़ा व्यवधान है या आप आज जल्दीबाजी में ना जाएं, तो कृपया उनकी बातें सुनें। मौसम की जानकारी लेना ना भूलें। और पहाड़ी रास्तों पर एक सेल्फी लेने का जो प्रचलन चला है ना, इससे जरूर बचें। यात्रा को सुखद बनाएं, मनोरंजक बनाएं और अपनी फोटो लीजिए। ये नहीं कि आप व्लॉग बनाने के चक्कर में, अपना प्रचार प्रसार करने के चक्कर में ऐसी ऐसी वीडियो बना दें जो पहाड़ी रास्तों पर थोड़ी जोखिम भरी हो सकती हैं, क्योंकि वहां पहाड़ हैं, फिसलन का डर बना रहता है। तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। कृपया इन सब बातों का ध्यान रखें और यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। और सुनते रहें आकाशवाणी देहरादून।

श्रोताओ, जहाँ हम ठंड के लिए, सुकून के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, वहीं हमारे शहर आजकल तप रहे हैं। जब शहरों से हरियाली कम होने लगती है, तब गर्म हवाएं भी अपना असर दिखाने लगती है। प्रकृति को बचाना है, भविष्य को ठंडक देनी है, तो हमें कुछ उपाय जरूर करने होंगे। आज शहरों में बढ़ती गर्मी केवल मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली और पर्यावरण की चेतावनी भी है। कंक्रीट के जंगल, कम होते पेड़, बढ़ते वाहन और प्रदूषण शहरों को पहले से अधिक गर्म बना रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम पेड़ों की लगातार कटाई कर रहे हैं विकास के लिए। प्रदूषण बढ़ रहा है धुएं की वजह से, अत्यधिक गाड़ियों के दबाव की वजह से। कंक्रीट और ऊंची इमारतों की अधिकता, वाहनों और एसी से निकलने वाली गर्म हवा और साथ में पानी के जो जल स्रोत हैं, उनका कम हो जाना भी इस गर्मी को बढ़ा रहा है। कोशिश करें कि अपने एसी को 26 से 27 डिग्री पर ही रखें। आप महसूस करेंगे, उसके साथ पंखा चलाएं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बिजली की खपत भी बच रही है और आप प्रकृति को बचाने में थोड़ा सा सहयोग कर पा रहे हैं। और हो सके तो वाहनों में कार पुलिंग एक बहुत अच्छा साधन है। जो भी एक तरफ को जाने वाले लोग हैं, तो अपने साथ किसी और को भी बैठा के ले जा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका जितना अधिक प्रयोग आप करेंगे, उतना आप ईंधन भी बचाएंगे और रोड में बढ़ते दबाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जितना हो सके प्रशासन द्वारा बनाए नियमों को मानते चलें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कई बार हमारा क्रोध भी गर्मी को बढ़ा देता है। तो अगर जब हम घर से निकलें तो शांत मन से निकलें। भीड़ होगी, ये आप भी जानते हैं, तो बस इसमें आपको चाहिए कि आप संयम बनाए रखें और अपने साथ साथ दूसरों के भी कंफर्ट का ख्याल रखें। और जब भी मन करे, आनंदित होना चाहें, तो सुनिए आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित कार्यक्रम।

श्रोताओ, इस गर्मी में बार बार जलन होना, पसीना आना, मुंह में छाले हो जाना, कमजोरी या बेचैन महसूस होना, ये हमारे गलत खान पान के कारण शरीर की गर्मी को बढ़ा देता है। ये एक आम समस्या हो जाती है गर्मी के दिनों में, और हम लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं। लंबे समय तक शरीर में ज्यादा गर्मी रहने से डिहाइड्रेशन, पाचन खराब होना, स्किन प्रॉब्लम और यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है। जब शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाए और शरीर को संतुलित नहीं कर पा रहा हो, तो उसे कहा जाता है बॉडी हीट। और ये स्थिति ज्यादा गर्म मौसम, गलत खान पान, कम पानी पीना और इसके कारण हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा पसीना आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, त्वचा में रैशेज आ जाते हैं, पेट में एसिडिटी होने लगती है, थकान के साथ साथ चिड़चिड़ापन आने लगता है। और इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा कम पानी पीना, ज्यादा देर धूप में रहना, अत्यधिक कैफीन का इस्तेमाल करना, नींद की कमी होना। और कई बार हम लोग तनाव में चले जाते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, तो ये भी अत्यधिक गर्मी का कारण बन जाता है। तो ऐसे में 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिए, गर्मी के दिन है तो आप इसे और बढ़ा सकते हैं। नारियल पानी या इलेक्ट्रोल्स को भी ले सकते हैं। छाछ मट्ठा पाचन को सुधारता है और आपकी हीट, जो बॉडी की हीट है, उसको बैलेंस करता है। खीरा, ककड़ी, इन सब का सेवन कीजिए। और जो भी चीज आप छाछ ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, उसमें अगर आप पुदीना डाल लेंगे ना, तो आपके शरीर में ये ठंडक पैदा करेगा। और इसी की बनी चटनियां या ड्रिंक लेकर आप अपने शरीर की गर्मी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और एलोवेरा जूस तो है ही, फल खाएं, रसदार, तरबूज, खरबूज, संतरा, ये भी नेचुरली हीट को कम करते हैं। और अगर आप ठंडे पानी को सहन कर सकते हैं तो ठंडे पानी से स्नान करें, तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ढीले और सूती कपड़े पहने, टाइट या सिंथेटिक कपड़े गर्मी बढ़ाते हैं। तेज मसाले, फास्ट फूड और ऑयली चीजों से शरीर को दूर रखें, क्योंकि ये भी मसाले ज्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में हीट पैदा कर देते हैं। और सबसे जरूरी चीज, पर्याप्त नींद लें, इससे आपके शरीर का संतुलन बना रहेगा। बस यही छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जिससे हम इस गर्मी से बच सकते हैं, और जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, छोटी बहन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Folta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा

तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री

0: उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी सैनिक साथियों को जय हिंद। सैनिक साथियों, आज का दिन केवल एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि उस अमर वीर की स्मृति का दिवस है जिसने अपने साहस और बलिदान से भारत माँ का मस्तक ऊंचा किया। आज हम याद कर रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित वीर सपूत मेजर सुधीर कुमार वालिया को, जिनका जन्म आज ही के दिन 24 मई 1969 को हिमाचल की पावन धरती पर हुआ। वे केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि देशभक्ति, वीरता और समर्पण की जीवित मिसाल थे और हैं और आगे भी रहेंगे। हिमाचल की पावन धरती पर जन्मे मेजर सुधीर कुमार वालिया ने बचपन से ही अनुशासन और देश सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स के इस जाबाज अधिकारी ने कारगिल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अद्भुत साहस का परिचय दिया। कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं डिगने दिया, गोलियों की बौछारों के बीच अपने साथियों का नेतृत्व करते रहे। आपकी वीरता ने उन्हें रैम्बो जैसी पहचान दिलाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी भारत माँ के प्रति उनका अटूट समर्पण। आज उनके जन्मदिन पर पूरा देश उस वीर को श्रद्धा और गर्व से नमन कर रहा है।

श्रोताओं, मेजर सुधीर कुमार वालिया भारतीय सेना के उन वीर सपूतों में गिने जाते हैं जिन्होंने अदम्य साहस, देशभक्ति और नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें भारतीय सेना में रैम्बो के नाम से जाना जाता था। मेजर सुधीर कुमार वालिया का जन्म हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता सूबेदार मेजर रूलिया राम वालिया भी सेना में थे, इसलिए बचपन से ही उनमें देश सेवा की भावना थी। उन्होंने सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और बाद में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए तथा भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए से प्रशिक्षण लेकर भारतीय सेना में अधिकारी बने। सन 1988 में वे भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। बाद में उन्होंने नौ पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन की, जो भारतीय सेना की सबसे साहसी और कठिन इकाइयों में मानी जाती है। उन्होंने श्रीलंका में भारतीय सेना आईपीकेएफ के साथ भी सेवाएं दी। अपनी बहादुरी, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व क्षमता के कारण वे साथियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान मेजर वालिया ने दुश्मनों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। उन्होंने अत्यंत कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में अपने दल का नेतृत्व किया और विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साहस के लिए उन्हें वीर चक्र और सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया।

वर्ष 1993 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कांडी गांव में एक बेहद खतरनाक सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये इलाका घना और अत्यंत दुर्गम था, जहां हर कदम पर जानलेवा खतरे से भरा हुआ था। वहां उन्होंने अपनी मजबूत कमान, अद्भुत साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण से इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया। इसी वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद आया 1999 के कारगिल युद्ध। उस समय मेजर सुधीर कुमार वालिया तत्कालीन थलसेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक के सहायक अधिकारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने स्वेच्छा से ये पद छोड़कर अपनी मूल इकाई 9 पैरा SF में वापस जाने का निर्णय लिया। जब देश को उनकी जरूरत थी, उन्होंने आराम और सुरक्षा को ठुकरा दिया। बटाली क्षेत्र में उन्होंने अत्यंत जोखिम भरे अभियानों का नेतृत्व किया। दुश्मन की ऊंची चोटियों पर चढ़कर सीधे टकराव में उन्होंने निर्णायक हमले किए। जुलू स्पर जैसी महत्वपूर्ण चौकियों पर उनकी टीमों ने पीछे से घुसकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी टीम द्वारा 100 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया गया। कारगिल विजय के ठीक एक महीने बाद 29 अगस्त 1999 को वे कुपवाड़ा जिले के हाफरूड़ा जंगल में एक खोज और विनाश अभियान पर निकले। सुबह अपने 5 कमांडो की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ वे घने जंगल में आगे बढ़े। अचानक से वहां 20 से अधिक भारी हथियारों से लैस आतंकियों की मौजूदगी सामने आई। मेजर सुधीर ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़ते हुए अकेले ही 2 से 4 मीटर की दूरी से 4 आतंकियों को मार गिराया और इसी दौरान उनके चेहरे, छाती और हाथ में गंभीर रूप से गोलियां लग गई, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। घायल अवस्था में जमीन पर लेटे हुए वे लगातार अपनी टीम को आदेश देते रहे, जब तक सारे आतंकी खत्म न हो जाएं, रुकना मत। ये अभियान पूरी तरह से सफल रहा। 9 आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें से 4 आतंकियों को मेजर सुधीर कुमार वालिया ने खुद ढेर किया। अभियान समाप्त होने के बाद भी वे करीब 35 मिनट तक वहीं पर डटे रहे और रास्ते में आते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया, लेकिन दुश्मन का पूरी तरह सफाया सुनिश्चित करके आज भी 9 पैरा SF और भारतीय सेना में घातक पलटन का नाम लेते ही मेजर सुधीर कुमार वालिया की छवि सामने आ जाती है। दुश्मन का अंत बिना रुके, बिना डरे, आखिरी सांस तक लड़ते रहना, यही उनकी पहचान थी। ऐसे योद्धा सच में सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, जो केवल युद्ध नहीं लड़ते बल्कि अपने बलिदान से इतिहास रचते हैं।

मेजर सुधीर कुमार वालिया के कार्यों ने अद्वितीय शौर्य, नेतृत्व और आत्म बलिदान को दर्शाया। उनका निडर आक्रमण, विपरीत परिस्थितियों में भीषण संघर्ष और मृत्यु के सामने उनकी दृढ़ता भारतीय सैन्य इतिहास में साहस के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में अंकित है। उन्होंने भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, जो अद्वितीय वीरता और साहस का प्रदर्शन है। मेजर सुधीर वालिया को उनकी असाधारण वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए 26 जनवरी 2000 को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी मेजर सुधीर कुमार वालिया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन सच्चा सैनिक जीवन, अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करता हुआ आज भी लोगों के लिए संदेश रूपी है। वो कहते थे, देशभक्ति केवल शब्द नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है।

वीर कभी मरते नहीं, वे तिरंगे की शान बनकर सदैव अमर हो जाते हैं। मेजर सुधीर कुमार वालिया का बलिदान हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्योति जलाता रहेगा। जब जब भारत माँ के वीर सपूतों का नाम लिया जाएगा, उसमें मेजर सुधीर कुमार वालिया का नाम अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। कुछ लोग जन्म लेते हैं और समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ वीर अपने कर्मों से अमर हो जाते हैं। मेजर सुधीर कुमार वालिया उन्हीं अमर योद्धाओं में से एक हैं। आज उनके जन्म दिवस पर हम केवल उन्हें याद ही नहीं करते, बल्कि उनके साहस, त्याग और देश प्रेम से प्रेरणा भी लेते हैं। तिरंगे की शान में जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस वीर सपूत को शत शत नमन है। ईश्वर करे भारत भूमि ऐसे वीरों को बार बार जन्म दे।

मेजर सुधीर कुमार वालिया जैसे वीर सपूत सिर्फ इतिहास नहीं बनाते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और देशभक्ति की प्रेरणा बन जाते हैं। आज उनके

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली से पीपल्स।

FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3:24 हुए हैं। पेश हैं गाने नए तराने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी दोस्त श्रुति शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं स्त्री 2 फिल्म के गीत के साथ विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और सचिन जिगर का ही संगीत है। हमारी दुनिया में कोई चीज ठिकाने पर नहीं, सुनो ना, हमारी दुनिया में कोई चीज ठिकाने पर नहीं, बस तुम्हें देख के लगता है कि सब अच्छा चल रहा है।

भूत बंगला, आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में इस फिल्म का गीत। कुमार के बोल हैं और प्रीतम का संगीत। हर धड़कन में तेरा ही नाम होता है, हर धड़कन में तेरा ही नाम होता है, तू ना हो पास फिर भी तू ही सब ओर दिसता है।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे एक दीवाने की दीवानियत फिल्म का गीत, जुबीन नौटियाल की आवाज में। संगीत दिया था कुणाल वर्मा ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं मातृभूमि फिल्म का गीत, समीर का लिखा हुआ है और हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया। आवाज है निहाल तोरू और अनकोना मुखर्जी की। तुम्हें क्या पता तुम्हारे इंतजार में हमने वक्त कैसे गुजारा है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे इंतजार में हमने वक्त कैसे गुजारा है। एक बार नहीं हजारों बार इस चांद को एक टक निहारा है।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बवाल फिल्म का गीत आकाश दीप सेन गुप्ता और लक्ष्य कपूर की आवाज में। कैसर मुनीर के बोल हैं और आकाश दीप सेन गुप्ता की संगीत। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को खर कर देता है।

श्रोताओं, गाने नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी प्यारी बिंदु फिल्म का गीत परिणीति चोपड़ा की आवाज में। संगीत दिया है सचिन जिगर ने। खुद को हमारे भीतर ही छोड़ गए तुम, खुद को हमारे भीतर ही छोड़ गए तुम। सुनो ना, तुम्हें तो ठीक से बिछड़ना भी नहीं आया।

और अब आज के कार्यक्रम का समापन गीत हमने लिया है, फिल्म है सितारे जमी पर, आवाज दी है अरिजीत सिंह और शिवा पारुलकर ने, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत। कुछ यहां रखे हैं, कुछ वहां रखे हैं, कुछ यहां रखे हैं, कुछ वहां रखे हैं, तुम्हारे ख्याल न जाने कहां कहां रखे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4 बजे हैं। अब श्रोता सुने FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुशील पुरोहित से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। चमोली जिले के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जिलेवासियों एवं यात्रियों से अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण नहीं करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने चमोली में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने यात्रा मार्ग और पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार ने बताया कि कंचनगंगा क्षेत्र में हुए हिमस्खलन से किसी प्रकार की जनहानि व संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सनातन मूल्यों और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अल्मोड़ा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4:02 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम साबिर से राग धुन में सारंगी वादन।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को कुछ पलों का विराम देते हैं और 4:20 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको सुनवाते हैं पीपुल्स पद्मावन आकाशवाणी में श्री हेलीवर से बातचीत।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में राग शुद्ध सारंग में गुलाम साबिर से सारंगी वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हमारे श्रोताओं ने सुना राग शुद्ध शार सारंग और धुन में सारंगी वादन। कलाकार थे गुलाम साबिर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4:30 हुए हैं। पेश है आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोताओं, हिंदी फिल्म संगीत को दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी धुनें केवल कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती हैं। ऐसे ही सुरों के जादूगर हैं राजेश रोशन। जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे इन्हीं पर। इनकी बनाई धुनों के गीत आपको सुनाएंगे और करेंगे आपका मनोरंजन। इन्होंने अपने मधुर संगीत से कई पीढ़ियों की भावनाओं को आवाज दी। उनकी धुनों में प्यार भी है, दोस्ती भी है, रोमांस भी है और जीवन की मिठास भी। ऐसे संगीतकार जिनके गीत समय के साथ और भी सदाबहार होते चले गए। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। बातें आगे भी जारी रहेंगी।

श्रोताओ, भारतीय संगीत की दुनिया में राजेश रोशन एक ऐसा नाम है जिन्होंने मधुर धुनों, भावपूर्ण गीतों और आधुनिकता के सुंदर मेल से हिंदी सिनेमा को कई यादगार गीत दिए। वे प्रसिद्ध संगीतकार रोशन के पुत्र हैं। राजेश रोशन का जन्म आज ही के दिन 24 मई 1955 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम राजेश रोशन लाल नागरथ है। संगीत उन्हें विरासत में मिला क्योंकि उनके पिता रोशन हिंदी फिल्मों के अत्यंत सम्मानित संगीतकार थे, तो बचपन से ही घर में संगीत का वातावरण रहा जिसने उनके मन में सुरों के प्रति गहरा लगाव पैदा किया। उन्होंने पियानो और संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण लिया और धीरे धीरे फिल्म संगीत को दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर कभी कभी वो मानते थे कि संगीतकार बनने के बजाय वो 10 से 5 बजे की सरकारी नौकरी करें जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। राजेश रोशन ने अपने माता पिता के अलावा उस्ताद फैज अहमद खान से संगीत की शिक्षा ली। 70 के दशक में राजेश रोशन संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक के तौर पर भी काम करने लगे। राजेश रोशन ने संगीतकार के रूप में अपने सिने करियर की शुरुआत 1974 में महमूद की फिल्म कुंवारा बाप से की थी, लेकिन कमजोर पटकथा के कारण ये फिल्म नहीं चल पाई। और राजेश रोशन की किस्मत का सितारा चमका 1975 की प्रदर्शित फिल्म जूली। इससे इस फिल्म में उनके संगीतबद्ध गीत दिल क्या करे, जब किसी से प्यार हो जाए, माई हार्ट इज बीटिंग, ये रातें नई पुरानी और जूली आई लव यू श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने बतौर संगीतकार अपनी एक अलग पहचान बनाई और 4 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राजेश रोशन को सफलता प्राप्त हुई। आइए इसी फिल्म का यह खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं जिसे आवाज दी है किशोर कुमार।

जूली फिल्म के बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें से याराना, खून भरी मांग, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश, मिस्टर नटवरलाल, कामचोर, खट्टा मीठा, ऐसी 150 फिल्में हैं जिसमें उनकी धुनों का जादू सड़ चढ़ कर बोलता है। उनकी धुनों में मधुरता, सरलता और भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती है। राजेश रोशन के संगीत की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, लेकिन अपनी मेलोडी को कभी नहीं छोड़ा। उनके गीतों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ आधुनिक संगीत का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। उनके संगीतबद्ध कई गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं। छूकर मेरे मन को याराना फिल्म से हर संगीत प्रेमी को गुनगुनाने को मजबूर कर देता है। राजेश रोशन ने हिंदी सिनेमा को

अनेक यादगार धुने दी और कई पीढ़ियों के संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनका संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है। राजेश रोशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पहले गायक नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव संगीत निर्देशन की ओर हो गया। उनके पिता रोशन के निधन के समय राजेश रोशन काफी छोटे थे। पिता की कमी ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया और संगीत को ही वो अपनी पहचान बनाने का संकल्प दे दिया। फिल्म जूली के लिए संगीत तैयार करते समय उन्हें ज्यादा अनुभवी नहीं माना जा रहा था, लेकिन फिल्म के गीतों की सफलता ने रातों रात उन्हें एक चर्चित संगीतकार बना दिया। राजेश रोशन को मधुर धुने बनाने के लिए जाना जाता है। वे अक्सर कहते हैं कि गीत ऐसा होना चाहिए जिससे आम इंसान गुनगुना सके। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उनका संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। याराना का गीत, जिसकी बात अभी हमने आपसे की थी, आइए आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वो आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है।

0: श्रोताओ, राजेश रोशन रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत शांत स्वभाव रखते थे, संगीतकारों तथा गीतकारों को पूरा समय देते थे। इसी वजह से बड़े गायक उनके साथ काम करना पसंद करते थे। अपने भतीजे ऋतिक रोशन के लिए भी उन्होंने उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है के लिए संगीत दिया, जिसे पूरी फिल्म को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर शब्द ब शब्द याद हैं। राजेश रोशन ने बदलते दौर में भी मेलोडी को कभी नहीं छोड़ा। जब तेज बीट्स और रिमिक्स का दौर बढ़ा, तब भी उन्होंने सुरों की मिठास को अपनी पहचान बनाए रखा। वे अक्सर रात के शांत माहौल में धुनें तैयार करना पसंद करते रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार रात की खामोशी में सुर साफ सुनाई देते हैं। कुछ संगीतकार गीत बनाते हैं और कुछ यादें बनाते हैं। राजेश रोशन उन्हीं कलाकारों में से हैं जिन्होंने धुनों के साथ आज भी दिलों में धीरे धीरे गूंजती रही हैं उनकी धुनों की आवाज।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

श्रोताओ, संगीत का असली जादू वही होता है जो वर्षों बाद भी दिल को छू जाए, और राजेश रोशन की धुनों में यही अमर एहसास बसता है। उनके गीत केवल फिल्मों का हिस्सा नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी की यादें बन चुके हैं। सुरों की इस खूबसूरत यात्रा के लिए हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं और समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से धुनों के जादूगर राजेश रोशन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करे उनकी धुनों की मिठास यूं ही पीढ़ियों दर पीढ़ियों गूंजती रहे।

0: श्रोताओं, इसी के साथ एक कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज के कलाकार थे संगीत निदेशक राजेश रोशन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 5 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापार समझौता वार्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में इसके विस्तार का स्वागत किया और कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ऊर्जा आपूर्ति विविधता महत्वपूर्ण है। ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के हित ये सुनिश्चित करने में है कि

0: वैश्विक ऊर्जा मूल्य निचले स्तर पर बने और व्यापार निर्बाध हो।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे पहले बातचीत के शुरुआत में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी का उल्लेख किया। श्री रूबियो 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के मतों की गिनती के 20वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। मतगणना डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय में चल रही है। भाजपा के देवांशु पांडा ताजा समाचार मिलने तक 104,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, जबकि कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान चौथे स्थान पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया, जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। बोर्ड के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में शुल्क खाते में लौटा दी जाएगी। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है, जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

साय 5:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्मन आकाशवाणी के अंतर्गत सुश्री एस सी सुशीला अम्मा से बातचीत, साय 6:10 पर श्री श्रीरंग देवाबा लाट से बातचीत और साय 7:25 पर श्री महेंद्र कुमार मिश्रा से बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी साय 5:25 पर, जिसके ठीक बाद यानी संध्या 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा पर्वतांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

साय 7 बजे किसान साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। कार्यक्रम में आज होगी डॉक्टर संदीप कुमार से विकास चमोली की बातचीत। विषय रहेगा कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रमुख समस्या। कार्यक्रम सुगम संगीत में रात्रि 8:15 पर सुनिएगा सोमेश कुमार की स्वर में गाई चंद गजलें। कल साय 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 का सजीव प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। पर्वतीय लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शैल संगीत में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे लता पांडे और साथियों के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत। सवेरे 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। प्रातः 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में कल होगी डॉक्टर अश्विनी शर्मा से बातचीत। विषय रहेगा थायराइड रोग कारण लक्षण और उपचार। कार्यक्रम घर गृहस्थी का समय रहेगा दोपहर 12:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। अपने पसंदीदा फिल्मी गीत श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में प्रातः 11 बजे और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:02 पर, दोपहर 1:15 पर, अपराहन 3:02 पर, साय 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का समय रहेगा दोपहर 2:30 पर।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो हेलो, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों. मैं हूँ ऋतु कोटनाला और तहे दिल से स्वागत है आपका आज के युववाणी कार्यक्रम में. देखिए, युववाणी जो है वो युवाओं का शो है. यहाँ बातें होती है यूथ सेंट्रिक टॉपिक्स पर. और आज एक ऐसा ही ज़रूरी मुद्दा, ब्रेन ड्रेन, भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है. अब देखिए, ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि देश के प्रतिभाशाली छात्र, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और कुशल युवा बेहतर शिक्षा, नौकरी और लाइफस्टाइल के लिए विदेशों में बस जाते हैं. जब देश की प्रतिभा दूसरे देशों के विकास में योगदान देने लगती है तो भारत को आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है. भारत में हर साल कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाते हैं. कई लोग वापस ही नहीं लौटते क्योंकि उन्हें वहां बेहतर वेतन, रिसर्च की सुविधाएं और अवसर मिलते हैं. इसका ये प्रभाव

पता है कि देश में योग्य लोगों की कमी होने लगती है, विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में। ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे लगता है भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ाने होंगे। युवाओं को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वो अपनी प्रतिभा का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और रिसर्च और इनोवेशन के लिए आधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त फंडिंग भी मिलनी चाहिए। यदि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपने देश में ही सम्मान और संसाधन मिलने लगेंगे तो वो विदेश जाने के बजाय भारत में रहकर काम करना पसंद करेंगे। इसके अलावा सरकार को स्टार्टअप और नए व्यवसायों को भी बढ़ावा देना चाहिए, जो कि अब हो भी रहा है। आज कई युवा नौकरी करने के बजाय कुछ नया करना चाहते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं। अगर उन्हें आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन और सही नीतियां मिले तो भारत में ही रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। साथ ही समाज को भी युवाओं की मेहनत और प्रतिभा का अब सम्मान करना चाहिए और केवल विदेश में बसने को सफलता का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। देशभक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने ज्ञान और कौशल से देश के विकास में योगदान देना भी है। दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि ब्रेन ड्रेन को पूरी तरह रोकना तो कठिन है, लेकिन सही नीतियों, बेहतर अवसरों और सकारात्मक सोच के माध्यम से इसे कुछ हद तक कम किया जा सकता है। भारत में युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और अगर उनकी प्रतिभा का भारत में ही उपयोग हो तो हमारा देश तेजी से प्रगति कर सकता है और विश्व में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। दोस्तों, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, पर फिलहाल सुनिए ये ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, और इसे गाया है क्लिंटन सेरेजो ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कई चीज़ों के बारे में और मुझे अचानक ख्याल आया कि आज का जो युग है ना, वो तकनीक का युग है और इस तकनीकी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेज़ी से हमारी लाइफ का पार्ट बनता जा रहा है। नहीं देखिए, AI एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दे सकती है। पहले जो काम घंटों में होता था, अब AI की मदद से कुछ मिनटों में पूरे हो सकते हैं। इसीलिए आज AI केवल वैज्ञानिकों या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी हो गया है। AI का यूज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, बैंकिंग, खेती और एंटरटेनमेंट जैसे लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। शिक्षा में AI छात्रों को आसान तरीके से पढ़ने और नई चीज़ें सीखने में मदद तो करता ही है। ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट नोट्स और भाषा अनुवाद यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में AI बीमारियों का जल्दी पता लगाने और सही इलाज में डॉक्टर्स की हेल्प करता है। देखा जाए तो किसानों के लिए भी AI लाभदायक साबित हो रहा है। मौसम की जानकारी हो, फसल की गुणवत्ता और खेती के नए तरीकों के बारे में भी AI मदद करता है। व्यापार और उद्योगों में AI समय बचाता है और काम को अधिक सटीक बनाता है। आज मोबाइल फ़ोन में मौजूद वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया के फीचर्स भी AI का ही तो उदाहरण है। नहीं हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि AI के कारण नौकरियां कम हो सकती है और चिंता भी सही है, लेकिन AI नई तरह की नौकरियों के लिए अवसर को भी जन्म दे रहा है। अब ज़रूरत इसी बात की है दोस्तों कि लोग नई टेक्नोलॉजी को सीखें और खुद को समय के अकॉर्डिंगली विकसित करें। AI का सही और जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें AI को एक सहायक साधन की तरह यूज़ करना चाहिए और इंसानियत का विकल्प इसे कतई नहीं समझना चाहिए। और यही कहा जा सकता है कि आज AI की दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। ये हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को आसान, तेज और बेहतर तो बना ही रहा है। यदि इसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो AI मानव जीवन को और अधिक उन्नत बना सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये ट्रैक जिसे हमने फिल्म अजहर से लिया है और इसके सिंगर्स हैं अंतरा मित्रा और अधिजीत सिंह।

0: हेलो हेलो दोस्तों,
1: मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ ऋतु कोटनाला और हम बने हुए हैं युवाणी कार्यक्रम में। आज दुनिया में बढ़ता प्रदूषण और कचरा पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। प्लास्टिक, कागज और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे टाइम पे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का जो सिद्धांत है वो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने का सबसे आसान तरीका है। इसे 3 R भी कहा जाता है। सबसे पहला जो शब्द है उसे रिड्यूस कहा जाता है, यानी कि चीज़ों को कम यूज़ करना। हमें ज़रूरत के अनुसार ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और अनावश्यक कचरा नहीं बढ़ाना चाहिए। और प्लास्टिक बैग की जगह जैसे आप कपड़े के बैग का यूज़ कर सकते हैं, बिजली और पानी की बचत कर सकते हैं और फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। दूसरा शब्द जो आता है उसे हम रीयूज कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को बार बार उपयोग करना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फेंकने के बजाय आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पुराने कपड़ों से बैग बना सकते हैं, कांच की बोतलों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं।

रोजमर्रा के जीवन में 3R को अपनाएं तो इस धरती को स्वच्छ और सुरक्षित हम बना सकते हैं। रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल दोस्तों एक नारा नहीं होना चाहिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हम सभी पर है। तो अब हम बढ़ चलते हैं आज के आखिरी ट्रैक की तरफ, जिसे हमने लिया है फिल्म लुटेरा से और इसे गाया है अमित त्रिवेदी ने।

दोस्तों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। युववाणी विभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून हमारा पता है और आप हमें मेल कर सकते हैं yuvvani@gmail.com पर। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार, सुनते रहे ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ 100.5।

आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है पर्वतांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुंदरा हमारा सभी श्रोताओं ते रमन रावत को नमस्कार सेवा सौरी दगड़ा ही आज का कार्यक्रम का मेरा दगड़िया दीपक सिंह कुते भी मेरू प्यार भरू नमस्कार।
1: तो दीदी आप ते भी मेरू प्यार भरू नमस्कार और सभी सुंदरा भाई बंधुओं ते भी नमस्कार पहलाग और सिमानिया।
0: आशा च कि आप सब भी लोग अपनी कुटुंबदारी दगड़ी राजी खुशी होला और बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए तो वहाँ को आनंद भी लेना होला। श्रोताओं आज एतवार च और आज होंदू आज को विशेष कार्यक्रम श्रोताओं का अनुरोध माँ तो आप समझ गया होला कि मैं क्या पहुँचाणु छो तो कार्यक्रम हमन शुरू करे ली। अब बारी च आप लुखो कि सरासर चिट्ठी भेजा गीत सुनना को है ना
1: जी।
0: और चिट्ठी माँ गीत का बोल गीतांकु नौ अप

0: नो अपनो पता जरूर लिखण, जहाँ से कि हम तय पता चल साकू कि हमारा श्रोता कक कक बिटी की ये कार्यक्रम का माध्यम से हम दगड़ी जुड़िया छन, है ना
1: जी
0: दगड़िया?
1: जी बिल्कुल जी
0: तो हम धैर्य लगे ये ली
1: जी
0: पर चिट्ठी को पता बताऊँ इले बहुत जरूरी छ कि लेकिन वे सकदू कोई नयू श्रोता हम दगड़ी कार्यक्रम का माध्यम से जुड़ियों हो
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: वो बुनावला कि चिट्ठी बोलना अच्छा नहीं है कि चिट्ठी भेजा पर मेरे तो
1: पर
0: पता ही नहीं मालूम,
1: भेजण क्या पर
0: है ना?
1: आप सभी श्रोताओं से बता देना कि हमारे जो पता चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप झटपटाक चिट्ठी भेजा और अनुरोध करा अपना पसंदीदा गीतों को।
0: हमारी कोशिश रही कि आपकी पसंद का गीत हम एक बिटी की जरूर सुनोला पर वो गीत हमारा केंद्र माँ होण भी चेणा छन। इन्नी हो कि आप यूट्यूब बिटी सुनी कि हम तय गीत की फरमाइश भेजला तो हम वहाँ तय माफी चाहला कि वो गीत हम नहीं सुन सकदा।
1: जी
0: तो दगड़िया हम उन धैर्य लगे ये ली और
1: जी
0: अब चिट्ठी पत्री भी आनी होली, तो जबर तक हमारा सुनदरा चिट्ठी भेज दन तबर तक हम अपनी पसंद और गीत सुने देना।
1: जी
0: तो क्या
1: बिल्कुल।
0: सुनाना छा आज हम?
1: तो आज हम जितेंद्र पवार का स्वर माइक पहलू अपने पसंद को गीत गढ़वल गीत सुनूंगा, तो लियावा सुना।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनते रहो, अभी अपन सुनी रैबार, और रैबार से पहले अपन सुनी गढ़वाली गीत जितेंद्र पवार का स्वरमा। तो दीदी, आज आपका अनुरोध गीतों को दिनच तो देखभाल ते जोलमा के चाहे
2: ओ बहुत कुछ है के नहीं, बहुत चिट्ठी है के नहीं
1: गुरु बिजा हो यहां।
2: पर पहली चिट्ठी में पढ़ू छो युच देवेंद्र सिंह जी की
1: जी,
2: और यु छन सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज बड़ो वाला निकट जॉली ग्रांट देहरादून बिटी की लिखना छन। और बुना छन कि आप हमें मंजू सुंदरयाल की आवाज में बोले खुली गे होली जुनियाल दी रात गीत सुनाई दिया।
1: ओहो,
2: तो यू गीत छ जम
1: गीत लगणो दिखेणो नी कखी, पूरा टोटल ले सडो कंप्यूटर पर ये मन्नी दिखेणो
2: के कर लता।
1: तो इन कला कि यूं कोई गायु कोई दूसर गीत यूं ते सुनाई देंदा।
2: हां, इन भी सकदो भाई, है ना, ताकि उनके बाद भी रह जाऊ ते बुरु भी नहीं लगू और काम भी बन जाऊ, है ना। तो आवाज सुनदा मंजू सुंदरयाल गयो यू सुंदर सी गीत।

0: सुनते रहो। अभी अपन सुनी मंजू सुंदरियाल का सुरमा यू गीत। तो दीदी देख वर और क्या की चिट्ठी आई।
1: हाँ ये चिट्ठी आई च डिफेंस कॉलोनी देहरादून बीटी की विजय कुमार सिंह कार्की जी की। और ये बुना छन कि खास कर लिखी हो क्योंकि हम नियमित श्रोता छावर तो ये बुना छन कि रेशमा सा या शांति बिंजोला या विनय ध्यानी को गयों को गीत सुना दिया तो हम यूं तय निराश नहीं करदा और रेशमा सा को गयों एक सुंदर सी जौन सारी गीत यूं तय सुना दा।

0: सुनो, अभी अपन सुनी जोन सारी गीत रेशमा साह का शर्मा, तो देखवल दीदी अब क्या है चिट्ठी।
1: हाँ, ये चिट्ठिया ही च 107 चंद्र नगर देहरादून बिटी की मंजू रावत, पी एस चौहान, ऋषि राम भट्ट जी की। और यू बुना छन कि हम ते एक गीत सुनाया दिया बोले, रात घन घोर माजी रात घन घोर। तो जरूर सुनौला आपकी पसंद को, और यू नाराज भी होना छा कि पिछला हफ्ता बल हमारे पसंद को गीत नहीं सुने। तो कुछ तो मजबूरी जरूर रहे होली कि हुए सकदू समय नहीं रहे होलू, पर आप चिंता नहीं करा, आज हम आपने सुनाना छा आपकी पसंद को गीत।

0: सुन्दरो अभी आपन सुनी चंद्रदत्त सुयाल को गयूं गड़बड़ गीत।
1: और सुंदरों हम अपना गीत उतर एक में रोकना चाह किले कि एक कार्यक्रम आप लोग उतर लेके आया छा पीपुल्स पद्मा और आकाशवाणी श्री श्रीरंग देवाबा लैड को और यू दिल्ली मिट्टी की कार्यक्रम प्रस्तुत होलू।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में कृषि और मुख्य रूप से कपास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले श्री रंग देवबा लाड के साथ हमारी खास बातचीत। परभणि से सुदर्शन चापके के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
3: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुनी तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड़ है। तो तब तक कही सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राज मान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्रज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो भी दम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
2: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
3: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्र की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है और कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडिया जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है तो और दूसरी जो सिंपोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा ये बड़ी और छोटी। बड़ी में तो डेंडो की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है और जो सिंपोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है उसको डेंडो की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडो का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिंपोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है उसका वेट भी ज्यादा है और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया। तो इसको निकालने का मुझे ऐसा लगा कि सब अनाज सिंपोडिया को दे दिया तो इसमें कपास का वेट बढ़ जाएगा ऐसा मुझे मन में लगा चिंतन के बाद और फिर वो सही या झूठ है ये देखने के लिए मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के मोनोपोडिया को कट कर दिया और जैसा कट दिया जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिंपोडिया की लंबी बढ़ गई, सिंपोडिया के डेंडू की संख्या बढ़ गई, उसके वजन जो डेंडू 5-6 ग्राम का मिलता था अभी वो 8 ग्राम का मिलने लगा। एक फल फांदी पर 3-4 डेंडू लगते थे वो 7-8 आने लगे और मुझे बहुत खुशी लगी कि मेरा चिंतन सही दिशा से चल रहा है। परंतु मेरे मन में तो खात्री हो गई ये सही दिशा है और ये तंत्र किसानों का भला करने वाला है, परंतु उस किसान स्वीकार करेगा का नहीं करेगा मेरे मन में आशंका होती और किसानों को स्वीकार करने के लिए मुझे कई मात्रा में संघर्ष यानी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं समझाने का संघर्ष करना पड़ा।
2: कपास अनुसंधान और नए प्रयोगों के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने उन्हें पार कैसे किया?
3: मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कृषि शास्त्रज्ञ भी वो बोलते थे कि भाई दादा लाड क्या है उनका चिंतन तो हम नहीं बोल सकते लेकिन हमारे अभ्यास से कि एक पौधे के संजोड़ 3 मोनोपोडिया गई एक पर 5 डेंडू बोले तो 15 डेंडू कम हो गए, 5 ग्राम बोले तो यानी 70-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है, और दादाला टेक्नी से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा। और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ, और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगे, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटी पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो 3 बड़ी बड़ी ढालियां काटना, यानी पति को मान्य होगा तो पत्नी अड़ाती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता अड़ाता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
2: दादा लाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
3: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो, अभी 7,000 रुपए क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15-20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है, तो 1,20,000 क्विंटल का 7,000 रुपए पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपए, कहाँ पत्ती 40,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
2: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी उनको लगन नहीं है खेती की, और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता, लेकिन अलग अलग फसल में, केवल कपास का फसल आपके सामने आया है लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत बढ़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे, और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है। और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है, और ये तंत्र से मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ, ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
2: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं?
3: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए अनाज भी होना चाहिए, तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है भाकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
2: दादा लाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गाँव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में कृषि और मुख्य रूप से कपास फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कार्य करने वाले श्री रंग देवबा लाड के साथ हमारी खास बातचीत। परभणी से सुदर्शन चापके के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुनना था दिल्ली बीटी के प्रसारित कार्यक्रम पीपुल्स पद्मा और आकाशवाणी श्री श्रीरंग देवाबा लाड दगड़ी बातचीत। और आपको अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में मिछो आपका दगड़ी रमन रावत
1: और दगड़मा मिछो दीपक नेगी।
0: तो देर नहीं करता कि दगड़िया हमन जो धैर्य लगे छे तो हमारा सुन दो रोन टक लगे कि सुनी और चिट्ठियों की भरमार वेगी। वे सकदू कि हम सब चिट्ठियों ते आज का कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सका, पर जद का कोशिश कर सकदा हम करला। और अब ये चिट्ठी पढ़ू छो मैं, विकास सकलानी, बबीता सकलानी या दिल्ली बिटी की आई छे। और यो बोलना छन कि वाचस्पति रयाल जी को गयु एक गी सुने दिया, मी गरीब नोनु गोर चरोलू, है ना। तो आवाज सुनदा यू सुंदर सी गीत वाचस्पति रयाल को गयूं।

0: सुरधरो, अभी आपन सुनी वाचस्पति रयाल को गयो यो गीत, और गीत का अनुरोध करता छा विकास शकलानी जी।
1: और अगली चिट्ठी आई च जो हमारा सदनी का लिखवार छन, जागृति विहार नथनपुर देहरादून बिटी की बिनीता थपलियाल जी, शांति सेमवाल जी, और यू बुनी छन की ग्राम जगत की पूरी कुटुंब दरियो तय बिनीता थपलियाल की तरफा बिटी सेवस होली। तो हमारी तरफा बिटी भी आपको तय नमस्कार छ। और यू सुनने चाणी छन पूनम सती को गयों सुंदर सी गीत गाडो गुलाबंद। तो आवा देर नहीं कर दा और सुन दा ये गीत है।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनदरो अभी आपन सुनी पूनम सती को गयु गढ़वली गीत।
4: और ये का दगड़ा ही बगत हुणु च हिंदी मां प्रादेशिक समाचारों को, तो है कि पाली मां भिटोला। तब तक सुनदा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
5: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
6: सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
7: बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें।
5: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
8: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की और वन विभाग आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हल्द्वानी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को लगातार मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ साथ साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है।
9: इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक, और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और नीति क्षेत्र में भी अभी हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राज्य के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चार धाम हैं, आदि कैलाश है, माणा क्षेत्र है, नीति है, हेमकुंड साहब है, उन सभी पर बड़ी संख्या में इस पर श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ यात्रा संचालित होगी।
8: मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को लेकर कहा कि इस समय प्रदेश के सामने पेयजल, वनाग्नि, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली आपूर्ति बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से गर्मी के इस सीजन को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने धाम परिसर का निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यात्रा को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और लाखों श्रद्धालु धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 30 दिनों में 5,57,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंड साहिब में 7,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक मत्था टेक चुके हैं। चमोली पुलिस प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बद्रीनाथ व हेमकुंड यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं।
0: कपाट भी खुल गए हैं, उसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में, और अभी तक की यात्रा हमारी सकुशल रही है, अच्छी रही है लोगों की, और आगामी समय में और अधिक यात्रियों के बढ़ने की संभावना भी है।
8: वहीं पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं,
10: कर रहे हैं और लगातार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षित यात्रा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ स्लाइडिंग जोन जो इस यात्रा के क्षेत्र में है उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पर भी हमारी ड्यूटियां स्लाइडिंग जोन के दोनों ओर तैनात रहेंगी और प्रयास किया जा रहा है कि सुगम, सुचारू और सुरक्षित यात्रा को हम लोग संपन्न करवा सकें।
11: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
8: गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स की बैठक ली। जिलाधिकारी ने कहा कि मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर में बांट दिया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
12: तारीख को गंगा दशहरा का प्रमुख स्नान है और पिछली सालों में भी हमने देखा कि अच्छी संख्या में श्रद्धालु स्नान में आते हैं। उसी क्रम में आज हमने फोर्स की, जोनल सेक्टर ऑफिसर्स की और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग करी है। पूरे मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में डिवाइड किया गया है और ड्यूटी तैनाती आदि कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी विस्तृत प्लान बनाया गया है, ताकि क्योंकि अभी चारधाम यात्रा भी हमारी गतिमान है, कई श्रद्धालु आगे ऋषिकेश और चारधाम की ओर जा रहे हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट ऐसा रहे कि श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा भी सुगमता से कर सके। देखिए, सभी मंदिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मनसा देवी मंदिर हो, चंडी देवी मंदिर हो, दक्ष मंदिर, माया देवी मंदिर, जितने भी मंदिर है सभी जगह स्पेशली फोर्स को, मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है। अभी फोर्स ब्रीफिंग के बाद हमने ये भी देखा है कि और अधिक अधिकारियों की ड्यूटी और बढ़ाई जाएगी।
8: वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने एसपी सिटी अभय सिंह को मेले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया है।
13: 7 बजे से हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड की वजह से भी शहर में भीड़ है, तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है, इसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। तो प्रयास ये रहेगा जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको ट्रैफिक जाम या फिर घाटों पे भीड़ भाड़ की वजह से अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रखेंगे। मनसा देवी में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, जल पुलिस और एनडीआरएफ एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अतिरिक्त यातायात की विशेष योजना है और इसके अतिरिक्त ये जो हमारा जोन्स है इसमें मनसा देवी एक डिफरेंट जोन है और विशेष फोकस रहेगा उस पर, और पार्किंग में, पार्किंग के एंट्रीज है जहाँ पे प्रेशर बनता है वहाँ पे विशेष फोकस रहेगा। तो पूरी तरह गियर अप है, सीसीटीवी कैमरा और साथ में फायर सीजन चल रहा है, तो फायर सर्विस को भी इसमें अलर्ट किया गया है।
8: चमोली जिले में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि IOCL एवं HP के सेल्स अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पेट्रोल एवं डीजल के नियमित लोडर जिले में पहुंच रहे हैं और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जिलेवासियों एवं यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार आपूर्ति व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहा है और आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से जंगलों में आग से बचाव को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की है। वन विभाग अब वन क्षेत्रों, नाप खेतों और आसपास के क्षेत्रों में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। वहीं संभागीय वन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल महातिम यादव ने कहा कि जिले में कई मामलों में आग नाप खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिससे नुकसान की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर नई टिहरी जिला मुख्यालय के आसपास स्थित बुढ़ोगी, चवालखेत और विभिन्न पिकनिक स्पॉट क्षेत्रों के जंगलों में भीषण आग से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चमोली जिले के बद्रीनाथ के समीप कंचनगंगा में ग्लेशियर टूटने से यातायात एवं आम जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रशासन क्षेत्र का लगातार निगरानी कर रहा है। स्थिति पूर्णतः सामान्य है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि हिमस्खलन से किसी प्रकार की जनहानि व संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की और वन विभाग आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
15: रुक जा बुद्धू।
16: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
14: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
16: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: हिंदी समाचारों का बाद आप सभी को अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में एक बार फिर से स्वागत है। और मिछो रमन
3: और मिछो दीपक नेगी।
4: अगली चिट्ठी पढ़ना दगड़ा किले की समय नहीं छम्मा
3: जी, बिल्कुल
4: है ना। ये चिट्ठियां ही गुमानी वाला ऋषिकेश बिटी की, राजेंद्र सिंह पंवार जी की और यू बुना छन की मैं ते नरेंद्र सिंह नेगी को गयू कोई सुंदर सी गीत सुना दियावल है ना। तो देर नहीं करदा और सुनदा नरेंद्र सिंह नेगी को गयू ये सुंदर सी गड़ोली गीत।

0: सुनो अभी अपन सुनी नरेंद्र सिंह नेगी का गायो यू गड़वल गीत।
1: अगली चिट्ठियां च जागृति विहार नेहरू ग्राम रोड नथनपुर देहरादून बिटी की दिनेश चंद थपलियाल जी की। और मैं यू ये सोचना छो कि इतना देर के लिए करे ले के लिए कि यू तो सदा निकल लिखवार छन हमारा और सेवा सौ वो ना छन और वो ना छन की दुई हफ्ता बिटी यू चिट्ठी नहीं भेजी। कोई बात नहीं छे, आज ये सुनने चाहना छन भास्करानंद नौटियाल की आवाज माँ 2008 भादो का मास गीत। तो आवाज सुनदा दिनेश चंद थपलियाल जी की पसंद को यो सुंदर सी गीत।

0: सुनो दोनों, अभी अपन सुनी भास्करानंद नौडियाल का स्वरमाई गीत।
1: हाँ, और अब वक्त हूँ च उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को गढ़वाली माँ, और ये चिट्ठी देगी रामेंद्र सिंह रावत जी की। हम माँ विचारा कि आज ये कार्यक्रम माँ ये चिट्ठी तय शामिल नहीं कर सकना था हम, पर अगला हफ्ता हम जरूर ये चिट्ठी तय शामिल कर ला। वक्त हूँ च गढ़वाली माँ प्रादेशिक समाचारों को, तो आवाज सुन दा समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी धारादन बटन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी अंजलि भट्ट। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली, सरकार चार धाम श्रद्धालुओं का खातिर सभी सुविधाएं मजबूत करनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिवन वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत सीमांत गांवों तक दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देने। वन विभाग वन क्षेत्रों और नाप खेतों में आग लगाने वालों का खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो लो। और अब तक 557,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों बद्रीनाथ का दर्शन करें। अब समाचार विस्तार बटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन बोली कि श्रद्धालुओं तय सुरक्षित और सुगम यात्रा को अनुभव मिल सकूं, यहाँ का खातिर राज्य सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं तय सर्वोच्च प्राथमिकता दियोनी जी। हल्द्वानी मां पत्रकारों दगड़े वार्ता कर दवा मुख्यमंत्री बोली, सरकार यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं तय लगातार मजबूत करनी चाहिए। श्री धामिन बोली कि एक महीना मां करीब 20.5 लाख श्रद्धालुओं चारधाम का दर्शन करें। मुख्यमंत्री बोली कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन का दगड़ी साहसिक पर्यटन तय भी बढ़ावा दियोनी चाहिए।
3: इस बार चारधाम यात्रा अपने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ रही है और एक माह में लगभग 20.5 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं कल तक, और लगातार बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और आदि कैलाश यात्रा में भी 20,000 लोगों ने लगभग 20 दिनों में 20,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और नीति क्षेत्र में भी अभी हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राज्य के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चार धाम हैं, आदि कैलाश है, माणा क्षेत्र है, नीति है, हेमकुंड साहब है, उन सभी पर बड़ी संख्या में इस पर श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह के साथ यात्रा संचालित हो रही है।
2: चारधाम यात्रा तय सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनोन का खातिर पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया का निर्देशों पर जिला उप जिला अधिकारी श्रीनगरन यात्रा मार्गों और पार्किंग स्थलों को निरीक्षण केरी। टीमन, सिरोबगढ़, गोवा बीच, धारी देवी मंदिर, फरासू, स्वीत, पॉलिटेक्निक हॉल, आवास विकास मैदान तथा NIT मैदान को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा केरी। उप जिलाधिकारी श्रीनगरन बोली कि चारधाम यात्रा पर उन वाला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासनन की सर्वोच्च प्राथमिकता ची। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन श्रीनगर स्थित अलकेश्वर घाट पहुंचकर निर्माणाधीन विकास कार्यों को निरीक्षण केरी। ये दौरान उन बोली कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों का विकास का दगड़ी जन सुविधाओं तय सुदृढ़ बढ़ोन का खातिर निरंतर कार्य करनी चाहिए, जिसे क्षेत्रीय विकास तय भी गति मिलनी। उन बोली कि अलकेश्वर घाट धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि का खातिर महत्वपूर्ण स्थल जी, यक विस्तृत की जान वाली सुविधाओं बटिन स्थानीय नागरिकों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों तय लाभ मिलो। तखी खिरशु क्षेत्र का ग्राम प्रहरियों की बैठक मा श्री रावतन ग्राम प्रहरियों दगड़ी गाँव मा सक्रिय भूमिका निभाने वालों को आह्वान करी।
4: आ आप प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छे।
2: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहनन जिला सभागार गोपेश्वर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेनी। ये दौरान उन सर्वांगीण विकास विशेष रूप बटिन वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी लेनी। ये दौरान उन बोली कि वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत जिला का सीमांत गाँव का खातिर बड़ी एवं दीर्घकालिक विकास योजनाओं तय प्रस्ताव तैयार करे जालू ताकि यो क्षेत्रों में आधारभूत असुविधाओं का दगड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था तय मजबूती मिल सकली। उन स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों तय बढ़ावा द्योण पर जोर देंदा हुआ बोली कि सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान तय संरक्षित करदा हुआ उन तय आर्थिक रूप से सशक्त बनोन को आवश्यक ची। 19 अप्रैल बटिन शुरू हुई चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ ली और लाखों श्रद्धालु दर्शन का खातिर उत्तराखंड पहुंचना छिन। 30 दिनों में 557,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों बद्री विशाल का दर्शन करें जबकि हेमकुंड साहिब में 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं अब तक माथा टेकी ची। तीर्थ यात्रा की बढ़ती रफ्तार दगड़ी यात्रा बटिन जुड़िया व्यवसायियों का चेहरों पर रौनक लौटी ची। चमोली पुलिस प्रशासनन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का खातिर व्यापक इंतजाम करें। जिला अधिकारी गौरव कुमारन बोली यूं दिनों बद्रीनाथ व हेमकुंड यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की वृद्धि होनी चाहिए और आन वाला दिनों में यात्रा और अधिक चरम पर होली।
5: लगाव कर रहे हैं और लगातार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षित यात्रा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ स्लाइडिंग जोन जो इस यात्रा के क्षेत्र में है उनको चिन्हित किया गया है, वहां पर भी हमारी ड्यूटियां स्लाइडिंग जोन के दोनों ओर तैनात रहेंगी और प्रयास किया जा रहा है कि सुगम सुचारू और सुरक्षित यात्रा को हम लोग संपन्न करवा सकें।
2: उन बोली कि तीर्थ यात्रियों तक कोई असुविधा को सामना न कर पड़ू उनका खातिर सुरक्षा और सुविधा का सभी इंतजाम करे गए। तखी पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवारन बोली कि पुलिस प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का खातिर बेहतर इंतजाम किए गए हैं।
6: इसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में और अभी तक की यात्रा हमारी सकुशल रही है, अच्छी रही है लोगों की और आगामी समय में और अधिक यात्रियों के बढ़ने की संभावना भी है।
2: पौड़ी जिला में लगातार बड़ी वनाग्नि की घटनाओं तय गंभीरता से लियोंदा वन विभागन निगरानी और सतर्कता बढ़ेली। विभाग अब वन क्षेत्रों नाप खेतों और आसपास का क्षेत्रों में आग लगाने वालों का खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करोलो। संभागीय वन अधिकारी गढ़वाल महातिम यादवन बोली कि कई मामलों में आग जंगलों बटिन नाप खेतों और आबादी वाला क्षेत्रों तक पहुंचनी ची जैसे बड़ू नुकसान होने की संभावना बनी रहती। उन बोली कि वन क्षेत्रों में आग लगाने वाला और लापरवाही बरतने वालों का खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाली।
7: हमारी 34 क्रू स्टेशन और जितने भी हमारे फायर वॉचर जो हमने आयोजित किए हैं और जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं वो दिन और रात अथक प्रयास से वनाग्नि को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें काफी सफलता भी मिल रही है, परंतु जो शरारती तत्व है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार से वन क्षेत्रों में आग लगाए जाने की घटनाएं की जा रही है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी घटनाएं होंगी हम उसमें प्राथमिकी निश्चित तौर से दर्ज करवाएंगे।
2: तखी नई टिहरी जिला मुख्यालय का आसपास स्थित बुडोगी चावल खेत और विभिन्न पिकनिक स्पॉट क्षेत्रों का जंगलों में भीषण आग से सामान्य जनजीवन प्रभावित होनु ची और वन विभाग की टीम आग बुझोड़ में जुटी ची। ग्रामीणों ने बताया कि वनाग्नि का चलदा ऊते भारी परेशानियों को सामना कर पड़ दो।
8: मैं नाम विमला देवी ग्राम नंदगांव भेजे हमारे सर पूरू जंगल खुकेगी क्योंकि डांगरू का घास नहीं रहे हैं आमते यंत्र आप हैं सर क्या हमारे बच्चों का दूध होलू ना गैस मिलना ना कुछ मिल लग गया और जंगल में लाखड़ चिकाटन लाखड़ भी फूकन लग गया तथा के पर वकन खान पीण भी कने बनो कुछ नहीं ना जंगल में तथा हम तो दमन बोले कि घास खोजी खाज के वही जान पर कुछ नहीं ना होने लगे।
2: तखी प्रदेश में वन विभागन संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़े और लोगो बटेन जंगलों में आग से बचाव का खातिर सतर्कता बरतन की अपील करी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोली सरकार चारधाम श्रद्धालुओं का खातिर सभी सुविधाएं मजबूत करनी ची। केंद्रीय गृह सचिवन वाइब्रेंट विलेज योजना का अंतर्गत सीमांत गांवों तय दीर्घकालिक विकास योजनाओं को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देने। वन विभाग वन क्षेत्रों और नाप खेतों में आग लगाने वालों का खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करो लो और अब तक 557,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों बद्रीनाथ का दर्शन करें। ये दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ा ही आज का गाम जगत कार्यक्रम बटोलने रमन रावत और
0: दीपक सिंह ते
1: आज्ञा द्यावा।
0: नमस्कार।
4: पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि जगत में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका भैया विकास चमोली। तो कैसे हैं साथियों आप? भाई गर्मी जो है बहुत तेज पड़ने लगी है, और ऐसे में बहुत सारी सावधानियां हैं जिनका पालन हमने करना है, क्योंकि हीट वेव से बचने के लिए साथियों हमें जो पानी की मात्रा है हमारे शरीर में उसको बनाए रखना है। और जैसे कहा जाता है ना साथियों, कच्चा प्याज, आजकल कच्चे प्याज का खूब सेवन करना चाहिए क्योंकि ये हमें लू से बचाता है। दूसरा साथियों, जो भी तरल पेय पदार्थ हैं, जैसे हमारे घर में मट्ठा छाछ जिसको हम बोलते हैं, नींबू पानी का हम सेवन करें, ग्लूकोज वगैरह हम पिएं, सीट्रस फल जो हैं, विटामिन सी जिनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, खट्टे फल जैसे मौसमी आजकल बाजार में आ रही है, तो आप मौसमी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें ताकि पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में पानी रहे। और बाहर आप निकल रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है, जैसे अपने बदन को हमने पूरा ढक के निकलना है, पूरे आस्तीन के हमने कपड़े

पहनने हैं, और आंखों में भी साथियों हीट वेव का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। तो आप चश्मा पहनकर बाहर निकल सकते हैं, सन ग्लासेस जो है उनको लगाकर अगर आप निकलेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इससे राहत मिलेगी। क्योंकि साथियों आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपनी अच्छे से खेती बाड़ी कर पाएंगे, और अब तो आने वाला समय खरीफ फसलों का है, तो हाँ तैयारियां भी हमने करनी है। और साथियों खेती बाड़ी की बात करें तो आज जो आधुनिक कृषि है कहीं ना कहीं इसने हमारी कृषि को आसान तो बनाया है। जी हाँ, आप मानते हैं ना कि पहले जो हमारी कृषि हुआ करती थी सारे काम हमें हाथों से करने पड़ते थे, मानव श्रम की हमें अत्यधिक आवश्यकता पड़ती थी, और कभी अगर सही समय पर हमें मानव श्रम नहीं मिल पाया तो हम छूट जाते थे अपने सभी कृषि कार्यों से, हम छूट जाते थे अपनी फसलों की बिजाई से, खेत की तैयारी करने से, तमाम काम में हम पीछे रह जाते थे। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास आधुनिक कृषि है, आधुनिक कृषि यंत्र हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं खेत तैयार करने में। साथियों आप हैरो, कल्टीवेटर, ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर से आप खेत तैयार कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से साथियों आप खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं कटाई, छटाई, मंडाई, इन सब के लिए हमारे पास थ्रेसर से लेके आधुनिक कृषि यंत्र है, ड्रोन जैसी पद्धति का साथियों आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंचाई और उर्वरकों के छिड़काव, रसायनों के छिड़काव, इन सब के लिए ड्रोन जैसी पद्धति का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आधुनिक तौर तरीकों को साथियों अगर हम सीखेंगे, आधुनिक कृषि यंत्रों का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो हमारी लागत है वो भी कम आएगी, समय की भी बचत होगी और अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। आप कृषि से संबंधित जो भी प्रशिक्षण हैं उनको आप ले सकते हैं ताकि आप आधुनिकता को सीखें। बाजार की मांग के अनुसार साथियों अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप उन लोगों के संपर्क में ज्यादा रहें जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेना जानते हैं। कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं साथियों जिनका लाभ हम उठा सकते हैं खेती किसानी के लिए, साथियों जो हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हमें पता होंगी तो निश्चित तौर पर हमें खेती किसानी में तो मदद मिलने वाली है।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: पापा लाइए 3000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: एक बार फिर से स्वागत करते हैं साथियों कार्यक्रम कृषि जगत में और खेती किसानी में। साथियों अगर हम बात करें जैसे कि कद्दू वर्गीय फसलें इन दिनों हम बाजार में खूब देख रहे हैं, चाहे कद्दू हो, लौकी हो, तुरई हो, खरबूज हो, तरबूज हो, खीरा हो, तरह तरह की सब्जियां, फल, ये सब आपको बाजार में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि इनका ये समय चल रहा है, हमारे किसानों के खेतों में ये सारी फसलें लगी हैं। अब साथियों देखिए कि कई सारी समस्याएं इन कद्दू वर्गीय फसलों में भी आ सकती हैं और घरों में भी हम देखते हैं ना, बागवानी में हम इस तरह की फसलों को खूब लगाते हैं ताकि घरों से ही हमें ताजी ताजी सब्जियां, ताजे ताजे फल खाने को मिले। और जैसे कीट है, रोग है, खरपतवार है, इस तरह की आम समस्याएं कद्दू वर्गीय फसलों में देखी जाती हैं, तो कैसे इन समस्याओं का समाधान हमने करना है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार। तो आइए करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
6: धन्यवाद जी।
5: डॉक्टर साहब, सबसे पहले कद्दू वर्गीय फसलों को जानते हैं कि ये कद्दू वर्गीय फसलें कौन कौन सी हैं।
6: कद्दू वर्गीय फसलों में जो हमारी कद्दू वर्गीय है, जैसे कि कद्दू है, लौकी है, करेला है, खरबूजा है, तरबूज है, तुरई है, ये बेसिक सब्जियां आती हैं जो इस समय मार्केट में खूब तेजी से उपलब्ध हैं। और ये आफ्टर रबी सीजन के बाद ये जायद सीजन जो चल रहा है इस समय, फरवरी से लेकर के जून तक चलेगा, इसमें ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। और इसमें जैसे कि हमारे उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि देहरादून में विकास नगर है, ढकरानी है, हरिद्वार है एंड उधम सिंह नगर है, यहाँ पे व्यवसायिक स्तर पे कद्दू वर्गीय फसलों का उत्पादन किया जाता है। तथा साथ में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी है, देन चमोली है, वहाँ पे भी स्थानीय बाजारों को पूर्ति करने के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन किया जाता है।
5: जी डॉक्टर साहब, जैसे आज हमारी बातचीत का विषय है कद्दू वर्गीय फसलों में होने वाली आम समस्याएं, अब सबसे पहले समस्याओं की बात करें तो किस तरह के रोग इन फसलों में आमतौर पर देखे जाते हैं?
6: जी, पहला है हमारा कवक, जो फंगस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा जीवाणुनाशी या जीवाणु के थ्रू जो बैक्टीरियल डिजीजेस कहलाती हैं। तीसरा है विषाणु जनित, जो वायरस के नाम से जानी जाती है। अगर हम पहली बात करते हैं कवक के थ्रू डिजीज जो होती है, उसमें पहला डिजीज आता है उकठा रोग, जो विल्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पाउडी मिल्ड्यू है, उसके बाद आपका डाउनी मिल्ड्यू आता है, फिर आता है आपका फ्रूट रॉट आता है, ठीक है। उसी तरह जीवाणु जनित, जिसमें बैक्टीरियल विल्ट के नाम से एक डिजीज आती है, और उसके बाद विषाणु जनित, जो मोज़ेक के नाम से डिजीज पाई जाती है।
5: ये तो कई सारे आपने रोगों की बात करी। डॉक्टर साहब, किस तरह के लक्षण हमारे फसलों में दिखते हैं अगर ये रोग आ रहे हैं?
6: पहला जो कवक के थ्रू होता है, जो उकठा रोग है, उसमें विल्टिंग की समस्या ज्यादा पाई जाती है। अगर किसान भाइयों की यहाँ फसलों में इस तरह की समस्या आती है, तो उसमें पौधा पूरी तरह से मुरझा जाता है और वो धीरे धीरे सूखने लगता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कवक के थ्रू इसका रोग जनित हुआ है? तो उसमें आपको पेड़ को उखाड़ना है, उसके बाद उसको दो भागों में डिवाइड करना, उसके तने को। अगर उसका जो बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे जिसको वैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है इंग्लिश में, वो उसमें धारी उसकी जो ब्राउन कलर की या रेड कलर की दिखाई देती हैं, तो वो समझना चाहिए कि ये कवक के थ्रू ये डिजीज पाई गई है। अब इसकी रोकथाम के लिए जो है, किसानों को रेजिस्टेंट वैरायटी मार्केट से ला करके उनको उत्पादन करना चाहिए। साथ साथ में कुछ दवाएं हैं, जैसे कि बेबेस्टीन है, जो तेजी से मार्केट में उपलब्ध है उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए और साथ साथ में जो उसका ट्रीटमेंट है सीड का ट्रीटमेंट वो भी साथ में बुआई से पहले उसको ट्रीट करके सीड को बुआई करनी चाहिए। दूसरा डिजीज हमने बताया था पाउडी मिल्ड्यू। पाउडी मिल्ड्यू डिजीज में जो जैसा कि नाम से भी जाना जाता है कि कुछ पाउडर फॉर्म में ये दिखाई देगा
7: जी, जी, जी।
6: तो इजीली इसको आप फार्मर पहचान सकता है अगर उसके खेत में इस तरह की डिजीज आई है जब लगभग टेम्परेचर 22 से 30 तक टेम्परेचर जाता है तो ये डिजीज की ज्यादा संभावना पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि व्हाइट कलर का सफेद सफेद क्रीम कलर का परत छा जाती है पत्तियों में उसके साथ साथ तनों में, तनों के साथ साथ में उनके जो फल हैं जैसे कद्दू है या लौकी है जो फल हैं वहाँ पे भी व्हाइट कलर की परत छा जाती है। तो इसको जो है रोकथाम करने के लिए सल्फर युक्त फंगस जैसे कि हेक्साकोनाजोल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं किसान अपने उसमें
7: जी।
6: दूसरा जो डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि फार्मर का जो फसल है कद्दू है चाहे लौकी है या जितने भी कद्दू वर्गीय है तो उसमें उसकी पत्तियों की ऊपरी सतह पे पीले कलर का घेरा बन जाता है
7: जी।
6: और निचली सतह पे काटन की जो रुई होती है उसकी तरह फफून जम जाती है। ये इसके बेसिक पहचान है और ये जितना भी सॉयल के नजदीक पत्तियां होंगी वहां पे ये ज्यादा दिखाई देती है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि इसका जो प्लांट का डिस्टेंस है उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए अगर इसकी रोकथाम करनी है तो, और उसके साथ साथ जो खरपतवार उग रहे हैं उनकी भी प्रॉपर कटाई छनाई करते रहना चाहिए, साफ सफाई पूरी तरह से निराई गुड़ाई वगैरह करते रहना चाहिए। और उसके साथ में कुछ दवाएं हैं जैसे कि मेटालैक्सिल है, मैंकोजेब है, इनको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव 10 दिन के अंतराल में करते रहना चाहिए। साथ में अच्छा जल निकास होना चाहिए जिससे कि पैथोजन जो इसका कारक है फंगस का वो एक जगह एकत्रित ना हो पाए और वो जल के साथ बह जाए
7: जी। डॉक्टर साहब जैसे कई सारे रोगों के नियंत्रण के बारे में आपने बताया कि कैसे हम इन रोगों से अपनी

0: फसलों को बचा सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा डॉक्टर साहब, एक समस्या और कद्दूवर्गीय जो हमारी फसलें हैं आमतौर पर देखी जाती हैं, और किसान साथी जो हैं वो शिकायत भी करते हैं कि हमारी जो बेल है उसमें फूल तो अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन
1: जी
0: फल नहीं बन रहा, या अगर फल बन रहा है तो छोटी सी अवस्था में ही वो सड़ जा रहा है, गिर जा रहा है।
1: हाँ,
0: इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
1: इसके पीछे ये होता है कि जो हार्मोन्स हैं दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही हार्मोन्स की, तो इसके लिए अच्छा सबसे बढ़िया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है या जिब्रेलिक एसिड, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इनकी 3 बार इंटरवल में इनको छिड़काव 15-15 दिन में करते रहने चाहिए, ताकि इसमें जो फूल हैं वो प्रॉपर बनते रहें और ज़्यादा पैदावार होती रहे।
0: डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर हम कीटों की बात करें तो
1: जी
0: कई सारे कीट भी देखे जाते हैं इन कद्दूवर्गीय फसलों में, और वो कीट हमारी फसलों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, और जो सड़न की समस्याएं कई बार
1: जी
0: इनसे भी हमारी फसलों में आ
1: जी
0: जाती है। तो थोड़ा बताएं कौन कौन से कीट हैं जो हमारी फसलों को
1: जी
0: प्रभावित कर सकते हैं?
1: पहला मैं सड़न की बात कर लेता हूँ। मैं फ्रूट सड़न है इसमें, जो मेन इसका जो एंथ्रेक्नोज के कारण होता है, इसमें जब फ्रूट लगता है तो पहले आपको दिखाई देगा कि एकदम छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दें, दिन प्रतिदिन वो 1 से 2 दिन में वो बड़े बड़े स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं,
0: जी
1: बढ़ते रहते हैं, फिर वो दिन प्रतिदिन 2 से 4 दिन में पूरी तरह से वो फ्रूट सड़ने लगता है और वो पूरी तरह डेड हो जाता है फ्रूट।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें आपको बीज उपचार की बहुत ज़रूरत है सख्त, और उसके साथ साथ में एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड आता है जिसका नाम है कार्बेंडाजिम, जो बहुत तेज़ी से मार्केट में अवेलेबल है कार्बेंडाजिम, और उसका उसको मैंकोजेब के साथ मिला करके 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते रहने चाहिए। और जो हमारी कद्दूवर्गीय फसलें हैं तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बेल इसकी जो होती है उसको ऊपर लकड़ी में चढ़ा करके पैदावार करें, तो इन फ्रूट की जो समस्या है ये इससे बचा जा
0: सड़न की
1: सकता है,
0: समस्या से।
1: समस्या से बचा जा सकता है, क्योंकि फ्रूट जो है सॉयल में लगा रहता है तो उससे बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं।
0: जी
1: आपने बात कही कि
0: कीट।
1: कीड़ों की, तो कीड़ों में मेजर जो कीट है वो एक है व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं, जो सफ़ेद मक्खी है, दूसरा एफिड है, फुदका है, ये कीटों की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इनके जो कद्दूवर्गीय फसलों के जो फूल होते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसके कारण जो है कीट फूलों को अट्रैक्ट होकर के ज़्यादा आते हैं। तो सफ़ेद मक्खी सबसे ज़्यादा डिजीज़ भी मोजैक नाम की जो डिजीज़ आपको बताई थी मैंने, तो वो भी बहुत तेज़ी से फैलाती है, उस मोजैक सफ़ेद मक्खी ही फैलाती है, और ये वायरल डिजीज़ होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कभी भी फार्मर को ये दिखाई देता है अगर मोजैक डिजीज़, तो पहले सबसे पहले वो कीट की रोकथाम करें जिसका नाम है सफ़ेद मक्खी, उसके लिए फॉस्फोमीडान वगैरह है या मोनोक्रोटोफास है उसका छिड़काव करना चाहिए, या फेरोमोन ट्रैप है उसको भी अप्लाई करके किसान इनसे बच सकता है। और जो फुदका कीट है वो भी तेज़ी से फसलों पे उछल उछल के वो इजीली पहचान सकते हैं, और जो एफिड है, एपिड एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम माइन्यूट, वो दिखाई नहीं देता,
0: अच्छा।
1: वो प्लांट में टहनियों पे या उसकी पत्तियों पे एक साथ कॉलोनी बना करके बैठ जाता है, बहुत तेज़ी से पत्तियों को वो चूसता रहता है उसके रस को,
0: जी
1: तो इसके लिए रोकथाम करने के लिए मोनोक्रोटोफास है और क्लोरोपाइरीफास हैं जो अप्लाई करके किसान इससे बच सकते हैं। और जैसे कि लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो फार्मर्स नहीं अप्लाई कर पाता है उतना ज़्यादा,
0: जी
1: फेरोमोन ट्रैप भी अप्लाई कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। उसके साथ साथ में ट्राइकोग्रामा एक बायो कंट्रोल एजेंट आता है जो फार्मर बहुत तेज़ी से इस समय जैविक खेती के लिए उपयोग कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि जैविक खेती की बात आपने कही, तो कई सारे रसायनों का जैसे इस्तेमाल आपने बताया, रोग कीट में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या जैविक नियंत्रण भी कुछ है इनके?
1: बीमारियों के लिए जैविक नियंत्रण में बहुत सारे जैविक दवाइयां हैं मार्केट में अवेलेबल हैं इस समय, जिसमें ट्राइकोडर्मा एक कवक आता है और एक बैक्टीरिया आता है सीडोमोनास है, और दूसरा है बैसिलस है, और एग्रोबैक्टीरियम है, ये सारे बायो कंट्रोल एजेंट मगर मार्केट में पाउडर फॉर्म पे या लिक्विड फॉर्म पे अवेलेबल हैं। अगर इनका हम अप्लाई करते हैं एज ए सीड ट्रीटमेंट, तो इनका 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड में अप्लाई कर सकते हैं।
0: किसी भी दवा और रसायन की अगर हम बात करें, छिड़काव हमारे किसान साथी कर रहे हैं, तो किन सावधानियों का ध्यान आमतौर पर रखना
1: जी
0: चाहिए?
1: ज़्यादातर जो दवाइयां हैं छिड़काव करने का उसका टाइम शाम का होता है, 4 से 6 बजे तक आप छिड़काव कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी हवा कम चलती है और वो जो उसके कार्बनिक अंग हैं वो आपके ऊपर नहीं आएंगे या आपके मुंह के थ्रू नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ में आपको ग्लव्स वगैरह है, मास्क वगैरह है, प्रॉपर पहन करके ही और इनिंग के टाइम पे ही इसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो है उससे फसल को भी ज़्यादा लाभ मिले और आप स्वस्थ भी रहें।
0: तो डॉक्टर संदीप कुमार, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने कद्दू वर्गीय फसलों में होने वाली आम समस्याओं के विषय में हमारे तमाम किसान साथियों तक साझा की। आप स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसान साथियों, अभी आप कद्दू वर्गीय फसलों में होने वाली समस्याएं और समाधान के विषय में डॉक्टर संदीप कुमार से ये महत्वपूर्ण बातचीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं बातचीत का लाभ हमारे किसानों को ज़रूर मिलेगा। और अब समय है आपके मनोरंजन का, ये सुनाते हैं कार्यक्रम का ये सुंदर सा गीत।
2: आइए आइए बड़ा बात पर छपरा वाली शाम नी सहारनपुर के लिए आइए।
3: तो चलो भाई चलो, पानी पत कर रहा हम बाला लुधियाना।
2: चलो चलो भद्रगढ़ रोहतक बिहानी के जाना वाला, चलो बाज के चलो।
4: डाटिए रे डाटिए मोटर आए, मैं भी चलूंगी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर से स्वागत करते हैं साथियों कार्यक्रम कृषि जगत में। और उत्तराखंड की बात करें साथियों, तो जैसे कि जानी जाती है जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की जलवायु है, औषधियाँ और मसालों की खेती के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। और मसाले वाली खेती में अगर हम बात करें साथियों हल्दी की, तो हल्दी की बुवाई भी साथियों हमें बहुत अच्छा खासा लाभ दे सकती है। ये एक नकदी फसल है और अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें।

हैं उस हिसाब से अगर हम हल्दी की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा, जैसे कि अच्छी जल निकासी वाली भूमि हमारे पास होनी चाहिए, ज़्यादा पानी अगर साथियों जैसे आने वाला समय बरसात का रहेगा तो अगर एक जगह पानी रुकता है और वहाँ पर हमने हल्दी लगाया तो इससे हल्दी में गलन की समस्या आ जाती है। तो सबसे पहली बात कि जल निकासी की आपके पास उचित व्यवस्था वाली भूमि हो, दोमट मिट्टी और गर्म नम जलवायु सबसे उपयुक्त तो साथियों इसके लिए मानी जाती है। उसके बाद साथियों बारी आती है बुआई की। तो बुआई के लिए साथियों अप्रैल से लेके जून तक का महीना इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बरसात शुरू होने से पहले पहले हमने जो हल्दी है इसकी बिजाई कर देनी है, जैसे कि मई जून का ये समय रहेगा। तो इस समय हम अगर हल्दी की बुआई करते हैं तो ये लगभग 7 से 8 महीने में पककर तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन हमें इससे मिल जाता है। लगभग 80 से 100 क्विंटल पैदावार प्रति एकड़ हमें हल्दी से मिलती है। खेत की तैयारी के लिए आप जानते हैं कि अच्छी आपने खाद वगैरह अपनी जो भूमि है उसमें मिलाना है, खेत अच्छे से आपने तैयार करना है ताकि खेत में मिट्टी के डले ना रहें। जो डले हैं आप उसको चूर सकते हैं, फोड़ सकते हैं हैरो और कल्टीवेटर के बाद आप अच्छे से पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दीजिए। मिट्टी अगर भुरभुरी होगी, हल्दी की गांठ को नीचे फैलने की पूरी जगह मिलेगी, तो उतने ही अच्छे कंद हमें हल्दी के मिलने वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता का साथियों अगर हम 7 से 10 क्विंटल बीज प्रति एकड़ के लिए लेते हैं तो ये पर्याप्त माना जाता है। और बीज उपचार साथियों इसमें बहुत ज़रूरी है। आप पहले बीजों को उपचारित करें, किसी भी फफूंदनाशक या गौमूत्र से आप उपचारित कर सकते हैं। उपचार के बाद साथियों आप बेड बनाकर 1 से 1.5 फीट चौड़े बेड आप बनाइए और पंक्तियों में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। 30 से 45 सेंटीमीटर साथियों पंक्तियों की हमें दूरी रखनी है और पौधों से पौधों की दूरी अगर हम 15 से 20 सेंटीमीटर रखें तो इससे भविष्य में जैसे खरपतवार का प्रबंधन करना है या निराई गुड़ाई छटाई करनी है तो हमें इसमें सुविधा रहेगी। और दूसरा, जब हल्दी के पौधे को पर्याप्त बढ़ावार के लिए जगह मिलेगी तो अच्छा उत्पादन इससे आपको मिलेगा। तो अगर आप भी हल्दी की बिजाई करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है, आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। और अब साथियों धीरे धीरे समय हो रहा है कार्यक्रम को यहीं पर समेटने का, लेकिन जाते जाते हम अपने किसान साथियों से ज़रूर कहेंगे कि आप हमें पत्र निरंतर लिखें। पत्र भेजने के लिए साथियों आप

0: आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
3: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध और समृद्ध है, उतनी ही जीवन भी। विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसके लोकगीत, लोक कथा और परंपरा। इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
4: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
5: धन्यवाद
4: सर। आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
5: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापाली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है, उसके साथ मेरा जीवन का

0: 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक, तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, यहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है, किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवार्न बार नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है और जो संपर्क है, उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के पर मेरा रुझान बढ़ गया
1: जी सर।
0: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
1: सर, आपने जैसे बताया कि उड़ीसा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारी, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उड़ीसा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
0: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं। एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक उड़ीसा का उपकल, जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है, जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आधा जंगल है और पहाड़ पर्वत है, जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में, वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा के उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था। और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं, और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला, उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया। और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में, कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुत प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को, और उसका जो नैरेटिव, जो आख्यान को, आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है, और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में, उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है, उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
1: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है, एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वह कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं।

0: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5 दिन 7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गाँव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टॉर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिल के ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है, तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है? तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
1: अब वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
0: काहे

0: पर्दे हुआ नहीं, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है, ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का, वो मंत्र ऐसे गाते थे कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। तो ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारे जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नए संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और श्रुति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। वो जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोक में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में वो लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण यह है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत। और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुँचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन अकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर अकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए। बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएगी।
1: आज की जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मॉडर्न म्यूजिक स्टाइल की तरफ आकर्षित हो रही है। अगर हम पारंपरिक लोक संगीत को इन नए मंचों से नहीं जुड़ेंगे तो धीरे धीरे ये अमूल्य विरासत लोगों की यादों से दूर होती चली जाएगी। तो इसीलिए आज के दौर में जो पारंपरिक लोक संगीत को आधुनिक मंचों से जोड़ने की कितनी आवश्यकता है?
0: बहुत आवश्यकता है। आम हमारा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसा है। इसको सचमुच टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के फिर गांव के पास उसको रिटर्न कराना चाहिए, न कि केवल वो भुवनेश्वर में या दिल्ली में या मुंबई में इसको केवल एक म्यूजियम के रूप में रखा जाए। उसका जो प्रयोग है उसी प्रयोग दो जगह में हो सकता है, एक ही स्कूल स्कूल कॉलेज में उसका प्रयोग करके इसका अध्ययन के लिए बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देकर बच्चों के गीत और कहानी को क्लासरूम के करिकुलम में देना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे देश का जो सामाजिक संगति है वो राष्ट्रीय संगति को बढ़ावा देता है। अगर गाँव की सामाजिक संरचना में हमारा देश का जो परंपरा का जो हेरिटेज या ऐतिहासिक और संस्कृति का बात अगर आगे नहीं रहेगा, आधुनिकता तो बहुत आएगा ही, लेकिन साथ साथ हम अपने जीवन से क्या खो रहे हैं, हमारा मेमोरी या स्मृति जो है हम उसको खो रहे हैं, हमारा कल्पना और सृजन को खो रहे हैं अगर हमारे गीत और कहानी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आधुनिक समय में जैसे रेडियो और टीवी में लोक गीतों का, लोक कहानी कथा का जैसे बढ़ावा दिया जाता है, यूट्यूब के जरिए आज काफी चीज लोग बचा के रखते हैं। आप अगर रिसर्च करेंगे देखेंगे कि बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली और जितने भी हमारे भारत के आंचलिक भाषा है, सारे भाषा में आजकल बहुत ऑडियो और वीडियो यूट्यूब में बहुत देखने को मिलते हैं। हालांकि उसको भी एक अगर उसको सिरोया जाए और राज्य स्तर में स्टेट फोकलोर सोसाइटी या केंद्र स्तर में स्टेट नेशनल फोकलोर सेंटर ऐसे अगर किया जाए तो देश का जो नेशनलिटी है, जो सांस्कृतिक जो हमारा राष्ट्र है, आज भी उसी लोक साहित्य हजारों साल से जिंदा है और रहेगा भी। लेकिन एजुकेशन के और आधुनिकता के कारण हमारे परंपरा नष्ट नहीं होना चाहिए।
1: सर और एक बात, कलाकार केवल प्रस्तुता नहीं होता है, वो संस्कृत के संरक्षक भी होते हैं, तो ओडिशा सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में कलाकार की क्या जिम्मेदारी है?
0: बहुत जरूरी है कि भारत ओडिशा बोलने से भारत है और भारत में ओडिशा है। हमारा एक भी गांव का आदमी वो खुद को एक भारत की संस्कृति और कला का बढ़ावा देने का एक जगह है, तो उसी जगह में वो अपना संस्कृति को जब बढ़ावा देता है तो वो भारतीय संस्कृति बनता है। कहीं भी कोई खड़ा हो और अपने गीत कहानी और संस्कृति और जीवन को जीता है तो एक भारतीय जीवन को जीता है। कलाकार कभी भी ज्यादा आर्थिक सहायता जो भी मिलता है उसमें चलता है, लेकिन कलाकार के लिए अनुष्ठानिक अनुदान मिलना चाहिए, जैसे कि पाला है, दासकाठिया है, ओडिशी डांस है, अमलपुरी डांस है उड़ीसा की, अगर ये सबके लिए एकेडमी बनता और वो एकेडमी में ज्यादातर लोकाभिमुखी होना चाहिए, तब क्या होगा, जिस लोगों ने कला का संवर्धन करके आगे बढ़ाया और जिस लोग उसके ऊपर रिसर्च किया और उसको डॉक्यूमेंट किया, वीडियो बनाया और फिल्म बनाया, उसके साथ एक जोगसूत्र रहना चाहिए, नहीं तो कलाकार लोगों का संवर्धन नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत ऐसा व्यवस्था है, कलाकार पेंशन है और कल्चर डिपार्टमेंट बहुत काम करते हैं।
1: सर पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करना किसी भी कलाकार के लिए एक अति गौरवमय और यादगार स्थान होता है, तो पद्मश्री सम्मान को प्राप्त करने के लिए कितना भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा?
0: मैं तो एक दो मिनट के लिए स्तब्ध हो गया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि हम तो आदिवासी और वो जो पिछड़े वर्ग के लोगों के साहित्य और जो अलिखित कला है जिसको कि इंस्टीट्यूशन में या अनुष्ठान में उसका मान्यता अभी तक नहीं मिला है, उसी को हमने 40 साल तक काम किया और उसी को स्कूल एजुकेशन में भी डाला। आपको खुशी मिलेगी कि ये जो गीत और कहानी जो आदिवासियों का था उसमें मैं 41 languages

0: कि मैंने लोक साहित्य के जरिए करता हूँ, और दूसरा है भारतीय संस्कृति और भाषा को स्कूल एजुकेशन में डालना। लास्ट 40 साल से ये उनके सम्मान में उनको समर्पित करता हूँ। मैं देश और लोगों की कहानी इसको जुड़ाकर मैंने केवल 25 किताब लिखा, जिसको कि आज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चलाते हैं। मुझे ये लगता है कि ये मैंने जिम्मेदारी बढ़ा दिए है कि मुझे इस देश के लिए, भारत माता के लिए और धरती माता के लिए मुझे और कुछ करना है।
1: एक अंतिम प्रश्न, हर युग में नए और युवा कलाकार अपनी प्रतिभा के साथ साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, लेकिन सफलता की यात्रा में धैर्य, लगन और निरंतर मेहनत का बहुत महत्व होता है। तो आप उभरते कलाकार को और लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: उभरते कलाकारों को एक शब्द में देता हूँ, उसका नाम है धीरज। वो धीरज के साथ सीखने के लिए प्रयास करें, न कि अपने को प्रचार करने के लिए। आजकल की जो युवा पीढ़ी होते हैं अपने बड़ों से नहीं सीखते हैं, परंपरा से नहीं सीखते हैं, हमारे हेरिटेज में क्या है उसको पढ़ते नहीं। उड़ीसा का जो 1000 साल का साहित्य है, अगर कोई 1000 साल का साहित्य और संगीत में पढ़ेगा उसका व्यक्तित्व में काफी प्रभाव आएगा। एक दीर्घकालीन योजना बनाना चाहिए कलाकारों को।
2: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा के लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रुति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
5: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। विकी डोनर फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत विशाल ददलानी और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में।

तुम मिले फिल्म से आप सुन रहे थे गीत नीरज श्रीधर की आवाज में, कुमार के बोल थे और संगीत था प्रीतम का। रांझना फिल्म से अगला गीत राशिद अली और नीति मोहन की आवाज में, संगीत सवारा है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

0: अब हमारे श्रोता जहाँ हम भी वहाँ। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: अब आजकल फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं ये अंतिम गीत मोहित चौहान की आवाज में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत प्रीतम का।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। काव्यांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुबोध कुमार सिन्हा की काव्य पाठ।
1: तो आज की बतकही की शुरुआत करते हैं प्रेम की बात से, जिस प्रेम के आलिंगन या यूं कहें कि आलंबन पर ही टिके हैं समस्त विश्व भर के संबंध। शायद आज की पहली अतुकांत बतकही का शीर्षक है प्रेम के तीन आयाम हैं। स्नेह, प्रेम और श्रद्धा, तीनों ही प्रेम के तीन आयाम। बचपन, जवानी और बुढ़ापा हैं जैसे जीवन के तीन सोपान। या कठोपनिषद के बाल पात्र नचिकेता का यमराज से हो मानो मांगे गए जैसे तीन वरदान। है प्रेम आज भी गूढ़ और रहस्यमयी, आयतन रहित पर परिभाषा अनगिनत, मानो आत्मा व मृत्यु के रहस्य वाला मांगा गया नचिकेता का है ये तीसरा वरदान। संज्ञान है विज्ञान का कि प्रेम तो है बस तप्त रक्त के ताप से धौंकनी, सांसों की धौंकनी पर तन की परख नली में सीजता कॉकटेल चार रसायनों का, टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन, एड्रोलिन एवं सेरोटोनिन का। और असर कुछ ऐसा कॉकटेल सा कि शब्द प्रेम सुनते ही है होता मन में कुछ कुछ, या सच कहें तो मन पाता है विस्तार बहुत कुछ। मानो करने से उच्चारण ओम का होता है जैसे बदन में ऊर्जा का संचार। है प्रेम तभी तो बसता है ये संसार। यूं तो कभी पाना है प्रेम, कभी खोना है प्रेम, कभी अपनाना है प्रेम तो कभी मजबूरी वश ठुकराना है प्रेम। सामाजिक प्रथाओं से परे है तो खतरा है प्रेम, या फिर डोपामाइन का खतरा है प्रेम। किसी से मिलना है प्रेम, किसी से कभी बिछुड़ना भी है प्रेम। कभी आगोश है प्रेम तो कभी बिछोह है प्रेम। कभी ऊर्जा है प्रेम तो कभी वर्षा है प्रेम। युगों से ये रहा है, आगे भी रहेगा निरंतर ही प्रेम। है तो ये शाश्वत पर है आज भी आत्मा व मृत्यु की रहस्य जैसा। गोया छह अंधों द्वारा एक हाथी टटोलने जैसा ही है ये प्रेम शायद। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आने से पहले 20वीं सदी के कुछ खेलों के हम सभी आज भी मुंतजीर हैं, यानी प्रतीक्षारत रहते हैं। काव्यांजलि की इस यात्रा में अपनी बतकही के अगले पड़ाव की ओर बीते दिनों के उन्हीं कुछ

0: की बातें करते हैं जिसका शीर्षक है नजर रानी की मुंतजीर। कभी व्यापार व्यापार एक खेल हुआ करता था, कभी व्यापार के नकली रुपयों भर से भी तिजोरी हमारी बस यूं ही अमीर हुआ करती थी। लूटों के उन कागजी बिना जमी घरों में ही सही, छत के बिना भी हमारी बड़ी जागीर हुआ करती थी। थी कैरम बोर्ड की तो वह महज लाल गोटी ही, पर हर नजर उस रानी की मुंतजीर हुआ करती थी। बनना कभी राजा मंत्री सिपाही तो कभी चोर भी, हर हाथ की पुड़िया खुलने को अधीर हुआ करती थी। पतंगों संग तब अरमाने भी थी ऊंचाइयां छूती, तब भला कहां हकीकत की जंजीर हुआ करती थी। रेत से बने घरौंदों पर उंगलियों से खुदी हुई हर तरफ हमारे नामों की ही तहरीर हुआ करती थी। ना कोई दिखावा ना कोई शोर शराबा, सादी सादी शादी गुड्डे गुड़ियों की तब तो अच्छी तकदीर हुआ करती थी। थे नहीं तब हम सभी बंधे लक्ष्मण रेखा में मोबाइल की, बस छू कित कित की केवल लकीर हुआ करती थी। आंख मिचौनी डेंगा पानी या फिर छुआ छुई भी, छूने से तब कोई बात नहीं गंभीर हुआ करती थी। स्टैचू का धप्पा चाई चूड़ी लट्टू पिट्टो गाना गोटी मिलने मिलाने की ढेर सारी हमारी तदबीर हुआ करती थी। आइए अब अपने जीवन की आपाधापी से तनिक समय चुराते हैं, हमारे प्रेम पूर्ण संबंध के लिए मिलकर प्रेम ग्रंथ गढ़ते हैं, पढ़ते हैं, मिलजुल कर प्रेम ग्रंथ की तलाश करते हैं। इसी तलाश वाली अगली बदकही का शीर्षक है ऋचाओं सी। कंदराओं में शिलाओं पर इतिहास गढ़ा है सदियों, यहां हमारे पुरखों ने रची अनेकों जवानी ही उपनिषद ग्रंथों की अमर ऋचाएं युगों तक ऋषि मुनियों ने। फिर बोलो ना तनिक दरकार भला पड़ेगी क्यों कलम की हमें प्रेम कहानी लिखने में। ऋचाओं सी मुझे याद जवानी तुम कर लेना, तराशूंगा मैं तुम्हें अपनी सोचों की कंदराओं में। फिर तलाशेंगे प्रेम ग्रंथ मिलकर हम दोनों कुदरत की उकेरी हुई उम्र की तूलिका से, एक दूसरे के तन बदन पर उग आई झुर्रियों वाली लकीरों में बस यूं ही। लोग कहते हैं कि प्रेम भरे संबंध को पनपने हेतु समय की मिट्टी के साथ साथ आत्मसमर्पण के उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। तो हमारी अगली बतकही का शीर्षक ही है आत्मसमर्पण। सुगंध लुटाते मुस्कुराते लुभाते बल खाते बहुरंग बिखेरे, खिलते हैं यहां सुमन बहुतेरे। नर्म नर्म गुनगुनी धूप में जीवन के यौवन वसंत में, पर तन जलाती चिलचिलाती धूप में जीवन के वृद्ध जेठ में, हे प्रेयसी खिलूंगा मैं बनकर गुलमोहर तुम्हारे लिए शीतल छांव लिए। गेंदा गुलदाउदी गुलाब होंगे ढेर सारे दिन के उजियारे में संग तुम्हारे, होगी बेली चमेली रजनीगंधा भी रात के अंधियारे में। परंतु जीवन की भादों वाली मुश्किल भरी अंधेरी रातों में पूरी रात रात रात भर सुबह होने तक रहूंगा संग संग तुम्हारे। फिर हे प्रेयसी झर झर कर लुट लुट कर हर सिंगार और कनक चंपा की तरह आत्मसमर्पण किए हुए, हाँ प्रेयसी रहूंगा पूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए बस यूं ही। प्रेम संबंध अगर मेहंदी के रंग की तरह अस्थाई ना होकर गोदने की तरह स्थाई हो, गोदना जिसे आज की पीढ़ी टैटू कहती है, तो अस्थाई प्रेम अमर हो जाते हैं शायद। तो अगली बतकही मेहंदी मेरे मन की शीर्षक के साथ। माना मेहंदी मेरे मन की रोम रोम पोर पोर रेशा रेशा हर ओर छोड़ कर दूंगा आत्मसमर्पण मन की तुम्हारी हथेलियों के लिए। और सहेजो भी तुम संभालो भी उसे कुछ लम्हों तक बड़ी सजगता के साथ अपनी मन की हथेलियों पर अपने अनुराग की लाली की लताओं के पनप जाने तक, ठीक जैसे बारहा तूलिका प्रकृति की उकेरती है सुबह सवेरे सूरज की लालिमा क्षितिज के पटल पर। पर ये क्या बस कुछ दिनों चंद हफ्ते महीने बाद या फिर एक मौसम के बीत जाने पर हर तीज त्योहार पर या सावन की फुहार तक ही, और फिर से वही रंगहीन हथेलियां मन की सूनी सूनी सी रंग उतर जाने के बाद। सोचता हूं चाहता हूं अक्सर ऐसे उतर जाने वाले रंग से तो है बेहतर मन की बाहों पर तुम्हारी उकेर देना अपनी चाहत का गोदना अपनी प्रीत के पक्के रंग से जो रहे अमीट शाश्वत ता उम्र। जैसे हिटलरी फरमान के तहत कभी कैदी यहूदियों की कतार में लुडविग लेल ने गोदा होगा गीता फुरमानोवा की बांह पर अमीट गोदना ताउम्र के लिए, और उसी 34,902 संख्या वाली गोदना की वजह से ही तो मिलते रहे ताउम्र वे दोनों एक दूसरे से जीवन के हर मोड़ पर। मिलते रहेंगे हम दोनों भी वैसे ही ताउम्र अगले जन्म का अनुबंध लिए इस जीवन के हर मोड़ पर बस यूं ही। स्वतंत्र रहना उन्मुक्त होना सभी को प्रिय है, परंतु जीवन के कुछ ऐसे भी पहलू हैं जहां हम उन्मुक्त होना ही नहीं चाहते, चाहकर भी उन्मुक्त नहीं हो पाते हैं। शायद इन्हीं उधेड़ बुन के साथ अगली बतकही का शीर्षक है एक रात उन्मुक्त कभी। हुआ था जब पहली बार उन्मुक्त गर्व और गर्भनाल से अपनी अम्मा के, रोया था जार जार तब भी मैं कम वक्त। क्षिण होते अपने इस नश्वर शरीर से होऊंगा और जब कभी भी उन्मुक्त चंद दिनों तक चंद अपने चंद पर आए तब भी रोएंगे बिलखेंगे वक्त बेवक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। लगाती आ रही है चक्कर अनवरत धरती युगो युगों से जो दुरस्त उस सूरज की, हो पाई है कब इन चक्करों से उन्मुक्त। बावली धरती की चक्कर लगाने से भी तो हुआ नहीं आज तक चांद बेचारा उन्मुक्त। धरे धैर्य धूरी पर अपनी सूरज भी उधर लगाता जा रहा है चक्कर अनवरत हर वक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। रचने की खातिर कड़ी दर कड़ी सृष्टि की मादाएं होती नहीं प्रसव पीड़ा से कभी मुक्त। दहकते लावा से अपने हो नहीं पाता उन्मुक्त ज्वालामुखी भी कभी, हो भले ही सुषुप्त। पतंग जल जल कर लौ में दीप की हर शाम होते तरस्त हो जाते मृत पर हो नहीं पाते उन्मुक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। चाहता है होना कौन भला ऐसे में उन्मुक्त। प्रेम भरा संबंध कई बार आभासी भी होता है, जिसकी पोल खुलती है हमारे बुरे वक्त में। तब पता चलता है कि हम जिस रिश्ते को मन से लगाए बैठे थे वह तो मात्र औपचारिक भर ही था। इसी ताने वाने के साथ आज की अगली सातवीं और अंतिम बतकही का शीर्षक है जल स्पर्श नदारद। गांव के खेत खलियानों में कहीं तो खेल के मैदानों में कभी लालसा बस छू लेने भर लेने की, उस जगह को जो अक्सर थी आभास सी कराती कि धरती आसमान से हो मानो मिल रही कहीं। बाल मन ने होड़ लगाई कितनी कई लगाई बाल तन ने दौड़ भी, ना मिलनी थी ना ही मिली कभी सफलता किसी जगह कभी भी। राह रोकता हुआ कोई हालांकि दिखा नहीं व्यवधान कहीं भी, है तो बस ये केवल एक आभासी आंखों का एहसास भर ही, जिसे क्षितिज कहते थे गुरुजी ये शब्द ये बातें सारी ज्ञान की, बाद में मैं था जान पाया विद्यालय की पढ़ाई के दौरान ही। घने अरण्य में बारहा बीच दपती दोपहरी में झुंड हिरणों की भटकती प्यासी मृग मरीचिका है जिन्हें लुभाती, पर जल स्पर्श तक नदारद हर बार ठीक क्षितिज सी। बाल तन लाख हो गया बड़ा आज बड़ा और बूढ़ा भी, पर बाल मन था जहां है ठिठका खड़ा वहीं। चाह लिए मन में अपने मिल जाए शायद आज भी, काश मिल पाते कभी सच्चे मन से दो रिश्तेदार सगे। रिश्तों के आभासी क्षितिज पर मिल पाती उन्हें तृप्ति भी कभी, जो भटक रहा था उम्र अनवरत रिश्तों की मृग मरीचिका के पीछे प्यास लिए अपनापन की। प्यास लिए ये आस लिए कि क्षितिज सा आभासी रिश्तों के बीच इन्हीं आभासी क्षितिज से उगेगा कभी तो कोई दूर ही सही पर अपना सा एक सूरज भी, अपनापन की किरणों वाली गर्माहट लिए एहसासों की धूप की बस यूं ही।
1: काव्यांजलि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुबोध कुमार सिन्हा की काव्य पाठ। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोमेश कुमार के स्वर में गाए चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सोमेश कुमार के स्वर में गाए चंद गजलें। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

जब हैरी मेट सेजल फिल्म से आप सुन रहे थे गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, संगीत था प्रीतम का। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में है, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने और गीतकार है जावेद अख्तर।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सनम तेरी कसम फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। शब्बीर अहमद ने इस गीत को लिखा है, हिमेश का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालु नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का

0: उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों

चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों आईआईटी के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

गर्व फिल्म से आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज है उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। शबीर अहमद ने इस गीत को लिखा है, संगीत साजिद वाजिद का।

फिल्म संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं खुद्दार फिल्म से ये अगला गीत। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत अनु मलिक का।

अलका याग्निक, उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाज में आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम परदेस।

0: श्रोताओं, गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रोशांतो दे रॉय।
1: In the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight, we present Sitar Recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned Sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro, Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी, बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़। द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal.

0: हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Raag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांतो दे रॉय।
1: You are listening to Raag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा